एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026, 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रख

0: करता है क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इंफाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है और वो उसकी तलाश में तमाम उपाय करता है, यहां तक कि उचित अनुचित साधनों का सहारा लेने से भी परहेज नहीं करता। नशा करने का उद्देश्य भी केवल सुख की चाहत है। धन संपत्ति अनेक भौतिक साधनों का संग्रह, शादी ब्याह बाल बच्चे घर परिवार, इन सब का प्रयोजन केवल सुखी जीवन जीने की कामना है। यहां

0: ऐसा कोई नहीं जो दुख चाहता हो। सबका लक्ष्य दुखों से छुटकारा और सुख की प्राप्ति है। तब सुख कहाँ है? ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं है। कोई किसी में सुख ढूंढता है तो कोई किसी में। अधिकांश लोगों की दृष्टि में सांसारिक प्राणी को पदार्थों में ही सुख दिखाई देता है, तभी तो वे सारी जिंदगी इसे बटोरने में लगे रहते हैं। घर गृहस्थी भी इंसान इसीलिए बसाता है ताकि वो सुखी जीवन जी सके। बच्चों की कामना के पीछे भी उसका यही मकसद होता है कि जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। यहां दोनों ही तरह की स्थिति देखने को मिलती है। कई बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और कई उन्हें उनके हाल पर भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों से सुख की कामना गैर वाजिब न होते हुए भी एक मृग मरीचिका ही है। यदि हम साधु संतों की जिंदगी पर दृष्टिपात करें तो उनकी सोच सामान्य व्यक्तियों की सोच से बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। उनका कहना है कि संग्रह में सुख है ही नहीं, सुख तो त्याग में है। हम यहाँ के प्राणी पदार्थों को अपने अनुकूल कदापि नहीं बना सकते, नहीं उनको संग्रहित करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सदैव निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। हम प्राकृतिक परिवर्तन से न बच सकते हैं न बचा सकते हैं, और इसी सोच के कारण वे अभाव में भी बेफिक्र मस्ती भरी जिंदगी जीते हैं। और यही सही है, साधन में सुख नहीं होता। यदि प्राणियों में सुख होता तो जिनका बड़ा परिवार है वे बहुत सुखी होते, लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसलिए आज लोग छोटे परिवार की योजना बनाते हैं। परिवार छोटा होगा तो झंझटें भी कम होंगी और बाल बच्चों की परवरिश भी बेहतर ढंग से हो सकेगी। और यदि पदार्थों में सुख होता तो साधन संपन्न धनवान व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होते, लेकिन जिनके पास अधिक धन संपत्ति है उनके पास उतनी ही परेशानियां भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें रात में नींद नहीं आती और उन्हें सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। इसके विपरीत सीमित साधनों में लोगों को संतुष्ट सुखी जीवन जीते देखा गया है। रोजी मजदूरी करने वाले अनेक अभावग्रस्त गरीब इंसान खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव में या फुटपाथ पर निश्चिंत सुख की नींद सो जाते हैं। इसका कारण है उन्हें अमीरों की तरह कल की चिंता नहीं रहती। आज की व्यवस्था हो गई, बस कल की कल देखी जाएगी। जीवन निर्वाह तो सबका होता है, फिर ये पागलों की तरह भाग दौड़ किस लिए? वास्तव में सुख और दुख हमारे मन की अनुभूति है, ये कहीं बाहर नहीं है। हम अपनी नासमझीवश इसे बाहर खोज रहे हैं। अनावश्यक धन दौलत की चाहत ही हमारे दुख के कारण है। जब हम इनकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं। ये सर्वत्र देखा जाता है कि अमीर और गरीब दोनों सुखी हैं और दोनों दुखी भी हैं। जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है वो सुखी है, और जो प्राणी पदार्थों की आसक्ति में डूबा हुआ है वो दुखी है। जीने के लिए बहुत साधनों की जरूरत नहीं। अपने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन लाकर हम उपलब्ध साधनों में ही संतुष्ट सुखी जीवन जी सकते हैं।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड पर 6:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं उदित नारायण नगाइच और चर्चा का विषय है रासायनिक उर्वरकों की पहचान कृषक कैसे करें।
1: किसान भाइयों नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी फसल कोई भी हो जिसमें उर्वरकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है फसल के उत्पादन के लिए। तो आज हम आप लोगों से जो चर्चा कर रहे हैं कि आपके सामने जो आप लोग क्रय करते हो बाजार से जो उर्वरकों का क्रय कर रहे हैं उस उर्वरकों का नकली है या असली है उसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जो बहुत उर्वरक उपयोग होने वाला है यूरिया, तो यूरिया में हमको क्या करना है जो दाने रहते हैं उसको पानी में अच्छी तरह से घोलना और पानी में घोल करके हम उसमें हाथ की उंगली डाल करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जो पानी पहले था उससे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसका तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से सही रूप से पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो यूरिया है वो असली यूरिया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा आपको तरीका बताएं यूरिया की पहचान करने का कि असली यूरिया का पहचान क्या है, तो इसको हम तवे पर गर्म करेंगे और तवे पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये गलना शुरू हो जाएगा, पानी बनेगा और पानी के बाद एक गैस फॉर्म के रूप में निकल के उड़ जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा नीम रेपित यूरिया चल चल रहा है तो थोड़ा सा विशेष उसी का बचेगा, बाकी यूरिया पूरा उड़ जाएगा गैस बनाकर। ठीक इसी प्रकार से हमारा और एक महत्वपूर्ण उर्वरक है डीएपी, इसको हम डायमोनियम फास्फेट बोलते हैं। डीएपी में हमारे जो किसान लोग हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस का डीएपी के माध्यम से पूर्ति करते हैं। ये हमारे कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है डीएपी। इसका चूंकि कीमत भी ज्यादा रहता है इसलिए इसमें मिलावट का आशंका सबसे ज्यादा बन जाता है। तो इसमें हम देखेंगे पहला तरीका ये है कि हम जो डीएपी है उसके कुछ दानों को लेकर के और उसमें खाने वाला चूना मिलाएंगे और उसको हम रगड़ेंगे। उसको जब हम रगड़ते हैं दोनों को तो इसमें से बहुत तीव्र गंध निकलता है, वो गंध इतना तीव्र रहता है कि उसको हम सूंघ नहीं सकते। तो इस प्रकार यदि गंध आ रहा है तो हम देखेंगे कि हमारा डीएपी असली है, उर्वरक सही है। इसी प्रकार से इसका जो उर्वरक का डीएपी का जो दूसरा तरीका चेक करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं डीएपी के कुछ दानों को लेकर के हम तवे पर गर्म करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि यह जो है फूलने लगता है, उसमें इसके दाने फूलने लगते हैं और यदि दाने इसमें फूलते हैं हम देखेंगे तो हमारा डीएपी असली है, सही है हमारा डीएपी। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे और एक महत्वपूर्ण उर्वरक है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं, जिसको हम पोटास की जो तत्व रहता है उसकी पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके हम देखेंगे पोटास में इसमें भी बहुत ज्यादा मिलावट की संभावना रहती है और हम पहचान भी आसानी से नहीं कर सकते। ये इस तरीके से रहता है यदि हम इसमें जो हमारी लाल ईंट रहती है उसको कोई पीस करके भी मिला दें तो हम सामान्य रूप से इसका पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो पहचान करने का तरीका है, पहला तरीका यह है कि इसमें जो दोनों तरह के कण रहते हैं लाल और सफेद, इनको यदि हम हल्का सा पानी डाल के मिलाएंगे और हम मिला करके दोनों को रगड़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों के कण आपस में नहीं मिलते हैं, लाल कण अलग ही रहेंगे और सफेद कण अलग से रहेंगे। तो इसका ये तरीका है कि दोनों कण आपस में नहीं चिपकेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं यदि कण आपस में नहीं चिपक रहे हैं तो हमारा जो एमओपी है वो असली है। ठीक इसका दूसरा तरीका है इसको पानी में घोलने से इसको जो लाल कण है वो ऊपर में रहते हैं और जो सफ़ेद कण है वो नीचे पानी में रहते हैं। इसको हम बहुत देर तक भी घोलेंगे यदि चम्मच के माध्यम से तो भी आसानी से नहीं घोलता और जो लाल कण है वो ऊपर आते जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो पोटास है और सही है, असली है। इसी प्रकार एक और पोषक उर्वरक रहता है सिंगल सुपर फास्फेट जिसे एस

0: गैस भी बोलते हैं, मात्र जाखर भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे इसके परीक्षण के लिए, इसको यदि हम गर्म करेंगे तो यूरिया का, जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो इसके दाने नहीं फूलते हैं। यदि दाने नहीं फूल रहे तो हम समझेंगे कि हमारा उर्वरक सही है, असली है।
1: कृषि संबंधित जानकारी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में। एफएम बैंड पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:35 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस कार्यक्रम। देशगान का प्रसारण समय होगा 6:50 का। सुबह 7:05 पर आनंदी जी का कार्यक्रम एक ही फिल्म से का, और आज की फिल्म है इतिहास। झरोखा कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:35 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे मांदर आप सुन सकते हैं 7:45 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी आप सुनेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9:00, 11:00, दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक लगातार, और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। लोक संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 10:10 पर, और 10:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5:00 का। शामी गजल कार्यक्रम हम पेश करेंगे 5:10 पर। 5:30 पर होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। कार्यक्रम में आज की गोट का विषय होगा वन है तो धरती पर जीवन है, वन महोत्सव। साथ ही सुनिएगा क्रम माटी के गीत। फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में शाम 6:20 पर और रात्रि 8:30 पर। किसान बंधुओं का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अपनी आमदनी बढ़ाएं, खेतों में उन्नत किस्में अपनाएं, और नसीहत में चर्चा का विषय होगा किसानों की समृद्धि का आधार किसान क्रेडिट कार्ड। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टिप, आज का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00, और 10:30 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण। समाप्ति तक ये थे हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी

0: किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस भाग 60। गायक कलाकार है ए हरिहरन और साथी। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

ही फटकती हुई प्रताप भवन को एक आश्रम दिखाई दिया, जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

ये हरिहरन और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे मानस गान। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:50 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान। रचना है बीके पुरी की।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार
1: सुरती के साथ। लेकिन आइए आप सुनते हैं FM गोल्ड पर संस्कृत में समाचार। एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेता काईशी इत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाईची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दोतरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेन से व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास

0: सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है इतिहास। श्रोताओं, 1997 में बनी यह फिल्म राजकंवर द्वारा निर्देशित की गई एक फेमस बॉलीवुड रोमांटिक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई अजय देवगन, ट्विंकल खन्ना, राज बब्बर और अमरीश पुरी ने। फिल्म के गीतों को लिखा समीर ने और संगीतबद्ध किया दिलीप सेन और समीर सेन ने। आइए इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनते हैं, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और हरिहरन ने।

0: अभियान।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: इतिहास फिल्म के गीत अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। इस फिल्म का अगला गीत आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और के पप्पू के युगल स्वर में।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: इतिहास फिल्म के कुछ गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। इस फिल्म का अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में।

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की युगलस्वर में अभी आप सुन रहे थे इतिहास फिल्म का ये गीत।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: इतिहास फिल्म के कुछ

गीत अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ए के फिल्म से में। श्रोताओं, इस फिल्म के गीत काफी लोकप्रिय हुए थे। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का अंतिम गीत अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन की आवाजों में।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे थे इतिहास फिल्म के कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था दिलीप सेन और समीर सेन ने। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 7:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

सुप्रभात मित्रों, प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में एक नए विषय के साथ मैं हाजिर हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे वन महोत्सव सप्ताह की, जो हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में मनाया जाता है। दोस्तों, वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का अभियान नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। पेड़ हमें शुद्ध वायु, जल, भोजन, औषधियां और जीवन के लिए आवश्यक संतुलित वातावरण प्रदान करते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो न वर्षा होगी, न हरियाली और न ही स्वस्थ जीवन। दोस्तों, आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां हमें यह संदेश देती हैं कि प्रकृति की रक्षा करना अब विकल्प नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता है। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में हजारों लोगों को स्वच्छ हवा देने के साथ साथ अनेक पक्षियों और जीवों का घर भी बनता है। श्रोताओं, वन महोत्सव हमें यह प्रेरणा देता है कि हम केवल पौधे लगाए ही नहीं बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी करें, क्योंकि पौधा लगाना आसान है लेकिन उसे पेड़ बनाना हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। श्रोताओं, आइए इस सप्ताह हम सभी एक संकल्प लें, अपने जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ या किसी भी विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। यदि प्रत्येक नागरिक हर वर्ष केवल एक पौधा भी लगाए और उसे जीवित रखे तो हमारा देश फिर से हरा भरा बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, एक पेड़ 100 खुशियां, हरियाली ही है आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी पूंजी। तो आइए मिलकर प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ लगाएं, पेड़ों को बचाएं और धरती को हरा भरा बनाएं। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार, और आप आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:45 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए झुमकलाल और मंजू चतुर्वेदी का गाया ये लोकगीत।

लता खापर्डे और नारायण गिरी के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम बाजीमांदर अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर 7:55।

0: 55 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी। विविध भारती कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। 10:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शामी गजल कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 5:10 पर। 5:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। कार्यक्रम में आज के गोठ का विषय होगा वन है तो धरती पर जीवन है, वन महोत्सव। साथ ही सुनिएगा क्रम माटी के गीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम हम पेश करेंगे 6:20 पर और रात्रि 8:30 पर। किसान बंधुओं का कार्यक्रम किसानवाणी सुनिएगा संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे अपनी आमदनी बढ़ाएं, खेती में उन्नत किस्में अपनाएं, इस विषय पर चर्चा और नसीहत का विषय होगा किसानों की समृद्धि का आधार किसान क्रेडिट कार्ड। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टिप, आज का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, SHROTARAIGARH, यानी shrotarayagad@gmail.com।
8: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: सौ दशमलव 7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाजी के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक

0: पॉजिटिव जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया।

0: हेलो जय जोहार राम राम। कार्यक्रम हावे संगवारी को हेलो संगवारी और मैं हूँ आप मन के संगवारी छोटे लाल। कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हावे। आप मन के फोन इन के माध्यम से हमन आप मन ला आप मन के पसंद के लोकगीत सुनाथन। तो चला लिया जाए पहला फोन ला संगवारी हो। हेलो
1: हेलो सर।
0: हेलो नमस्कार संगवारी।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: आप मन के नाम बता है संगवारी।
1: हाँ जितेंद्र आसमानीपुरी बोला तो सर।
0: जितेंद्र कहाँ ले बोला था संगवारी।
1: सर
0: हाँ बताओ संगवारी। आओ
1: हाँ सर। अरे पानी बादल अगोरा है सर। हाँ गिरे है।
0: हाँ
1: आंधी तूफान ताबड़ तोड़ है।
0: हाँ पानी बादल तो आज गिरे। आज तो आज रात के ही बढ़िया करी से हमारे यहाँ तो
1: ये धान नहीं गिरे सर।
0: अच्छा अच्छा मानसून तुम्हारा कति नहीं है बरी से। हाँ तो तैयारी है आप मन के खेती पाती के।
1: हाँ सर। हाँ सर।
0: हाँ तो बताओ संगवारी कौन सा गीत गाना ला आज अपन सुने पर चाहता था।
1: चलोगा किसान चलोगा मितान।
0: हाँ
1: हरेंद्र का है सर खेती किसानी।
0: हाँ ठीक है संगवारी। तो आप मन के बने फरमाइश आवे तो आप मन के फरमाइश पे आप मन पर प्रस्तुत है आप मन पर ये लोकगीत।
1: हाँ जी साहब धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद माइकपुरी जी।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ संगवारी
0: कार्यक्रम है संगवा। हेलो संगवारी, कौन बोला था संगवारी आपन?
1: जी मैं बोला था मेघापारा लोरमी ले मनोज कुमार साहू।
0: मेघापारा लोरमी ले?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: हाँ। और साहू जी बताओ क्या हाल चाल है?
1: मस्त जी, अच्छा है। मस्त आसन पानी गिरी से मस्त कर बत्तर शुरू कर वो।
0: हाँ तो बत्तर मिल गई से बोला?
1: हाँ बत्तर मिल गए।
0: अच्छा
1: अषाढ़ के झुके गठे नहीं, अषाढ़ के झुके किसान डाल के झुके बिंदरा।
0: हाँ
1: मस्त मौसम मस्त पानी दिन से मस्त सनम बेरा मा।
0: हाँ संगवारी आप मतलब एक बात बोल रहा बोला
1: बोला जी।
0: देखा जो हमर संगवारी कार्यक्रम आवे ना फोन इन कार्यक्रम, एमा आप मन निवेदन है कि जैसे आप मन के फोन हमन ले लेसन।
1: हाँ।
0: तो आप मन के फोन फिर आप मन जब भी फोन करिया फरमाइश गिरवा तो एक महीना बात करिया।
1: हाँ
0: के हमारे और संगवारी मतलब भी मौका मिले करके है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: और
1: हाँ।
0: कार्यक्रम के समय बदल गई से 10 ले 10-15 हो गई से हेलो संगवारी के।
1: हाँ।
0: तो आप मन ऐसे बखत बेर में हम फोन करिया। अब चला बताओ आप मन के कौन से फरमाइशी गीत है?
1: खेती
0: खार ठको बसल में गीत के फरमाइश ला करे है।
1: हाँ।
0: तो मोर खेती खार रुझुन मन भावरा नाचे झुमझुम।
1: मौसम के साथ साथ काम भी कर रहे, मौसम आनंद मिले तो रेडियो के तो फिर कामों ज्ञान नहीं।
0: हाँ, हाँ।
1: काम हो जाते मस्त दोनों काम चलते।
0: हाँ ठीक है फरमाइश। तो आप मन के पसंद प्रस्तुत है आप मन पर ये लोकगीत
1: जी। धन्यवाद।

0: कार्यक्रम है हेलो सनवारी।
1: जय राम भैया।
0: जय राम, कौन बोला सर जी?
1: रोशन रेवान बोला था, बिलाई गढ़ले।
0: रोशन रेवानगंज जी, का हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है।
0: आओ बतावा।
1: बस ठीक है रे, आज पानी गिरा थे रात कल, धीमे धीमे लगे पानी।
0: हाँ बने लगी से बोला।
1: हाँ साल लगी से तो पहली पानी गिरा थे हमारे गाँव में।
0: हाँ हाँ, और घाम हर कम हुई सब बोला, बढ़िया लगी बोला।
1: हाँ,
0: तो बतावा अब गीत गाना के फरमाइश ला भी बतावा।
1: झिमिर झिमिर बरसे पानी।
0: झिमिर झिमिर बरसे पानी।
1: हाँ, बीकम धर्माकर के आवाज में है गीत है।
0: हाँ हाँ
1: हाँ हाँ,
0: बड़े अभी ठको बखस बेर में ठकोच फरमाइश करे संगवारी, आपन के फरमाइश पर प्रस्तुत है आप मन पर ये गीत।
1: हाँ धन्यवाद।

0: हेलो कार्यक्रम है हेलो संगवारी।
1: हेलो संगवारी।
0: हेलो संगवारी, कौन बोला साहब? मन
1: सर अखिलेश कुमार यादव कन्या जिला बालाघाट मध्य प्रदेश।
0: अच्छा अखिलेश कुमार यादव।
1: हाँ जी।
0: हाँ यादव जी, और बताओ आप मन क्या मौसम कैसे है?
1: मौसम तो चेंज हो गए भैया, दो तीन दिन हो गए बारिश हो थे।
0: हाँ।
1: और खेती कार के काम धूमधाम से चालू हो गए भैया, कारवा चले।
0: हाँ हाँ, कुल मिला के तैयारी में। हाँ बोला खेती के।
1: मतलब
0: हाँ हाँ, जम्मो किसान मन ला गोर रही, तो जम्मो मनसे मन ला गोर रही। गर्मी ला देखा सुबह है ना, तापमान ला देखा सुबह
1: गर्मी ले रहे, राहत गलत मिले
0: है। जम्मो जन ला सुख शांति लगे है। तो बताओ संगवारी, आप मन के फरमाइश गीत ला
1: जतन करो, धरती के संगी जतन करो। और हमार संगवारी है रोशन देवांगन जी, गदा सुनना चाहते गीत ला।
0: हाँ
1: हाँ, आप मन और जम्मो कार्यक्रम सुने।
0: हाँ आप मन के भी धन्यवाद, आप मन फोन करे है एक बार। धन्यवाद
1: धन्यवाद।
2: संग जतन करो रे, जतन करो भूया।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम है हेलो संगवारी में आपन के स्वागत है। भैया आपन के नाम बताया।
0: मैं मिठू का दुर्गा चौक गेंदा से बात बोल रहे हैं।
1: गेंदा श्रीवाजी का हाल चाल है?
0: एकदम बढ़िया भैया।
1: हाँ तो बताओ अभी पानी वानी किसे गिरे हैं आपन के यहाँ?
0: पानी वानी तो हम आ गए तो भैया संगीतरी मराठन था पानी है तो सीटी सीटी का हवा है कोला बारी भी खाना खोला नहीं पड़ा थे पानी कम हो जाता था खुर्रा बोहन थे जागत खिलाऊ नहीं है एक बड़ी गिरती तो जागती खिलाऊ।
1: तो रेडियो आप मन बराबर सुना था हमारे कार्यक्रम सुना था
0: अपन के सबो कार्यक्रम हमें सुनता एकदम बराबर सुनता हमके सैलून के दुकान सैलून की दुकान में माझा रेडियो चलत रहते और थकाथक हमारे काम चलत रहते।
1: किसे लगा से लोग गीत वगैरह हमारे कार्यक्रम
0: के? हमारे तो बढ़िया है बहुत छत्तीसगढ़ी
1: के। और गेंदलाल जी आप मन एक बात बोलत रहे मैं है ना कि अब एक महीना बाद आप मन फोन करिए है ना काबर की हमारे और सोचा मतलब मौका देसन हमन
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया
1: है ना। फरमाइश गीत ला बतावा
0: नदी के तीर्थ हरियाणा में बांसरे वाला सुना दिया ममता चंद्राकर जी की आवाज में और दो चार दिन संगवाई के नाम ले रखते।
1: हाँ बोला संगवारी हो।
0: हाँ लक्ष्मी कुमार बड़े थे संतोष श्रीवास है मनोज यादव हवा लक्ष्मण वाधवानी हवा है पुरुषोत्तम सिंह भैया हवा है और बिलईगढ़ से रोशन देवांगन जी हम सब बातचीत करता था और कोर्ट बात होता था तो बहुत बढ़िया लागते आप मन के रेडियो के बारे में कार्यक्रम के बारे में।
1: अच्छा अच्छा
0: गाना बजते रहते।
1: ठीक ठीक ठीक संगवारी।

श्रोता संगवारी हो, हमर फोन इन कार्यक्रम मा मन के जतका भी संगवारी मन के फोन लाज हमन ले डारे हन, ओ मन ले निवेदन हावे कि आप मन एक महीना के बाद फिर फोन ला लगा हा, काबर की हमर और श्रोता संगवारी मन ला मौका मिलते फोन लगा के सेती, और आपेच मन के फोन ला सकेलत रहो तो फिर और हमर संगवारी मन के मन हर उदास हो जाते। एक बार संगवारी हो, जतका जी के हमर संगवारी मन हावे जेकर जीवन के फोन ला हमन ले डारे हन, ओ मन ले निवेदन हावे कि एक महीना के बाद मा आप मन ला फोन लगावा। और एक और महत्वपूर्ण सूचना संगवारी हो, हमर कार्यक्रम में समय में परिवर्तन हो सावे, हर मंगलवार के 10 ले 10-15 तक हेलो संगवारी के हमर फोन इन कार्यक्रम ला लेथन, और 10-15 ले 10-30 तक बिहनिया के बखत बेर में हेलो संगी के फोन ला हमन लेथन। तो ऐसने बखत बेर में संगवारी हो हमन ला फोन करिया, तो आप मन बर एक महत्वपूर्ण सूचना रहीस। हाँ तो संगवारी हो, ये तो रहीस आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी। संगवारी हो, आज के संचालन करता मैं आप मन के संगवारी छोटेलाल, तकनीकी सहयोग रहीस कौशलेन पैकरा जी के, प्रस्तुति सहयोग राम विलास पटेल जी, और प्रस्तुतकर्ता रहीन रवि आनंद जी। तो संगवारी हो, अब देवा मोला विदा, जमो संगी संगवारी मन ला छोटेलाल के राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9 बजे हैं, कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने से लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नजर लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि भाई इस समय में मुझे सोना है, और रोजाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी हो। कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी मेल भेजना हो, बहुत ज़रूरी संदेश भेजना हो, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें वगैरह

देखने के लिए ना करें फोन का इस्तेमाल, कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोजाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है, तो वो जो बहुत ज्यादा खुश रहता है या बहुत ज्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक जिद पाल लें कि सोना है समय पर और रोजाना, और ये जिद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी जिद है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये जिद जरूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का वक्त है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इसीलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद।

0: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
1: उंगली में

0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना,
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा।

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

0: भाई बादल क्यों भाई मोदी मैं सचेता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबीजी रामजी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोरदा विकासखंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि

0: छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में श्री साय ने कहा कि एआई मिशन के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में एआई कौशल विकास, स्टार्टअप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स और सुरक्षित एआई नीति के साथ मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारत नेट फेज 3 और सेवा सेतु पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य में लगभग 1000 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वहीं भारत नेट फेज 3 के तहत राज्य की 4114 ग्राम पंचायतों को आधुनिक इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने को कहा गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 3 जुलाई को सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ होगी। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रायपुर में आज गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक इस मानसून के दौरान मौसमी वर्षा सामान्य से 60% कम दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबीजी रामजी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 10:10 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 11 बजे, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। आप सुनिए हमारे शाम के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर वोट। शाम में गजल कार्यक्रम हम पेश करेंगे 5:10 पर। 5:30 पर होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। कार्यक्रम में आज की गुट का विषय होगा वन है तो धरती पर जीवन है, वन महोत्सव। और चर्चा का विषय होगा सहकारिता से करे सपने साकार। साथ ही सुनिएगा क्रम माटी के गीत। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अपनी आमदनी बढ़ाएं, खेती में उन्नत किस्में अपनाएं। और नसीहत में चर्चा का विषय होगा किसानों की समृद्धि का आधार किसान क्रेडिट कार्ड। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टीप, आज का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच।

फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। गैर फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम हमारे केंद्र से सुनिएगा रात्रि 10 बजे और 10:30 से हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी अब जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदु भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदु भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876 वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि

0: आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
7: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
8: FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए ममता चंद्राकर और सुनील सोनी का गाया ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ममता चंद्राकर के स्वर में ददरिया।
1: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मंगल भवन मंगल हारी
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: कार्यक्रम लोक संगीत में आइए अब सुनते हैं ममता चंद्राकर को।

ममता चंद्राकर और सुनील सोनी के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। पेश है आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम आपकी फरमाइश। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा और आज एक बार फिर लेकर आई हूं आपके प्यार भरे पत्र, आत्मीय ईमेल और आपके मनपसंद गीत। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं ये पत्र जिसे लिखा है झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, विमला, हर्ष, खुशी, शुभम वाधवानी, यहीं से हैं कन्हैयालाल तीर्थानी। अगला पत्र हमने लिखा है इंद्रानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल समीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। ताजपुर मोरवा से हैं कारी राय, कारी, मीना, पुंजराज आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से हैं जयंत कुमार बैरागी। ये सभी श्रोता साथी वक्त फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। साहिर लुधियानवी की रचना है और

0: फिर से?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
2: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
1: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
3: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे गैम्बलर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था नीरज ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। फरमाइशकर्ता अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी वर्मा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता नितिन, वंशिका दिवाकर, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल राजेश, वरिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि और अश्विनी शाह, यहीं से है मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत आप सुनेंगे रास्ते प्यार के फिल्म से, स्वर है किशोर कुमार और आशा भोसले का, रचना है आनंद बख्शी की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश करता बागभारा भद्रसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदनी जंगेल, धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल, माँ महामाया चौक मेघापारा से राम कुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल, माँ महामाया चौक से ही हैं दिव्या पटेल, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े, कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्मीन, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी

0: दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
4: श्रोताओं, आपके पत्रों और ईमेल्स के बिना हमारा यह कार्यक्रम अधूरा है। पत्र लिखने के लिए नोट करिए हमारा पता, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़। पिन नंबर है 496001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए सब्जेक्ट में लिखिए कार्यक्रम का नाम, आपकी फरमाइश, गाने के बोल और हमें श्रोता रायगढ़ @gmail.com पर मेल करिए। हमें आपके पत्रों और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आंधी फिल्म से। गुलजार की रचना है, तर्ज बनाई है RD बर्मन ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फरमाइश करता है रुआ बांधा सनीचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना सौरभ सॉरी और शुभम जैन, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथलेश, तारिणी सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जीतेक और

0: इस गाने के साथ ही आपकी रेडियो मित्र श्रद्धा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हम अन्य प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।
1: अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
3: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी
2: और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।
3: जब

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना, गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने 48 किलो से अधिक गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने को कहा गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 3 जुलाई को सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ होगी। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आगामी 4 और 5 जुलाई को 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। इस शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की भी समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों से मिश्रित खेती अपनाने की अपील की है। कांकेर में किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान धान के साथ दलहन और तिलहन की खेती करें तथा खेतों की मेड़ों पर मुनगा लगाएं। उन्होंने कम लागत और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री नेताम ने खेती के साथ मछली पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जैविक खेती अपनाने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि

धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए आदान सहायता प्रदान करेगी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्री नारायण मीणा ने बुधवार को बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सुंदर राज पी का स्थान लिया है, जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर एनआईए में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों और सांस्कृतिक दलों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित कलाकारों को शास्त्रीय संगीत और नृत्य, रंग तरंग वाद्यंत्र संगम, रंग परब, नाट्य श्रृंखला और लोक रंग पर्व जैसे आयोजनों में प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। गरियाबंद जिले के अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट खुटगांव पर पुलिस द्वारा की गई दो अलग अलग कार्रवाई में 48 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। चार पहिया वाहन के जरिए ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहे गांजे की कीमत 24 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 चार पहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। दुर्ग पुलिस ने लगभग 1149 खातों की पहचान कर 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अब तक 165 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में खुलासा हुआ है कि आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट यानी किराए का खाता बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने 48 किलो से अधिक गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना

0: और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युग।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियाँ चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, सौ सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम, ये कहता है दिल थाम लोगर रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे, रजनी गंधा संग खिलता मन बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है, तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नज़र आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफ़र में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नज़र आईं तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की, तीन दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में तीन दिन से तीन तीन फूल खिल रहे हैं, आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन के लिए भी उसमें तीन कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियाँ देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं, एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता माँ

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छाँट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख

किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलगंदी में जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेश

बच्चों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा दिनों, भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है। विविध भारती सुनना, हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

जवाब मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री। फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की इनायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफ़र शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफ़र में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

0: नजर। इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी सुमन जी शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नज़रों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं 4th ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं नहीं

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी ज़रा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज़्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और

ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफ़ी साहब के गीत के इस आवाज़ को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है, इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, ज़रूर वहाँ बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहाँ तक पहुँचें। और अब ये गाना आप सबके लिए, ज़रा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहाँ मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियाँ होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा ख़राब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाएँ, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें ज़रूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज़। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है, जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं, शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमयी हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है।

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज़ दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं, रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए खूब सारी क्लिक्स लेते हैं, लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतज़ार है, लेकिन कुदरत भी और इंतज़ार करा रही है, इंतज़ार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में। एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार

0: सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है। सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही हैं, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही हैं। बिल्कुल बादल, बिजली, चंदन, पानी और सुमन सुगंध की तरह। धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह। ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात हो गई लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ों पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज़्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नज़र में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्यक्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद ज़रूरी है।

0: सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।
1: भला

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे

0: पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा तीन दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बाताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावलीपल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत

0: जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा।

0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

गया। असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीत पर किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। यह है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: और क्या हालचाल है?
2: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
1: और झमाझम बारिश हो रही है तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
2: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
1: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
2: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
1: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है? जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
2: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
1: जी रहे हैं
2: और वो वक्त में उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खूब खुश होते हैं और आनंद का जो
1: क्षण
2: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
1: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
2: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पे घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी

0: बता दें क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
0: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
1: और आप क्या करना चाहिए?
0: गीत सुनना चाहिए,
1: तो सुनते हैं गीत।
2: सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती।
1: जी,
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया उन्हें। जी,
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही

0: सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
0: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम हैं बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे।
1: तो एक गाना सुनते हैं,
0: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा, हम कई बार ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं वैसा ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
1: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वैसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूं, है ना।
0: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
1: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
1: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना,
0: बहुत
1: और
0: सारी,
1: कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है, और फिर वो बातें पता नहीं कहां तक चली जाती।
1: और उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: इनके ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है, तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी सुंदर यादें, है ना।
0: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता, उस दिन मैं भी अपने या अपने बेटे के पुराने एल्बम निकाल कर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है, तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी, वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात,
0: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताज़ा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई, मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको फोटो जरूर दिखाता।
0: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए

0: आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताज़ा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा है जहाँ पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों बचपन शादी छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है। कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है। तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है। इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले
0: सहयोग मिले
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें घर में भी करें,
0: घर में भी हाथ बटाएं।
1: हाँ,
0: पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: ऐसा
0: ही काम करते थे।
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है ऑफिस है या व्यापार है जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है अपने माता पिता से दूर हैं तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग

0: अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं, पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
1: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
0: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
0: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एडुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए ज़रूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करेंगे?
0: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पा रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए
0: जी। अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सबने बहुत आनंद लिया था, सबने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी ज़िंदगी की उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस

0: या को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता
1: बिल्कुल
0: है।
1: और आज के ज़माने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
0: बहुत जरूरी
1: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
0: ले सकती है, अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा
0: पूरी कर सकती है।
1: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
0: पूरे
1: उस
0: परिवार
1: को होता है।
0: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, ना पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल।
0: और अब गाना सुन ले,
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमान तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता
1: तो है,
0: है ना? हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है
0: ना,
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्मपत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले,
1: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती हैं कि एक और ज़रूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए, तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही हैं कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन का मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
1: जी,
0: सुनते
1: सर,
0: हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश, अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर घर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है सर, बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपका तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने का शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खान और अकबर खान, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो।
0: खानदान फिल्म लगे? अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधर सर फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है
0: जी।
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके से वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसा हल रहा है कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब मौसम की बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी
0: सहगल साहब।
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री रोल है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सजन आ
1: जाना, क्या गीत है जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी, और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर, विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मंच चाहे गीत,
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं मंच चाहे गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितनी भी मेरे बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरे बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँचते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग तो, के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता है क्या कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: जी नमस्ते सर।
1: नमस्ते
0: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
1: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
0: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
0: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
1: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
0: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
1: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
0: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, तत्काल सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
1: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
0: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
1: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इफाजत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इफाजत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओहो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आपका नाम बताइए।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरदीप बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमरदीप जी।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: काटिया थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: भैया जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप
1: जी
0: लोग फोन करते हैं, तो आपके
1: जी जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है,
0: जी,
1: मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा तो एक सपना था सर कि मैं कभी विविध भारती में मेरा कॉल लग जाए हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं विविध भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, बहुत सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी जी, न्यूज एनआईआर वाला,
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी जी, बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट हालांकि आई है। श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है, यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में वारात बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: वारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: गर्मियों के 40 दिन वारात और

0: सर्दियों के 40 दिन चलाई कलाम, ये 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
1: अच्छा, तो ये बारात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते हैं?
0: बारात के समय जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ।
1: आपकी नज़र से वो गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
0: हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है, ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है। जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
1: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
0: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
1: नहीं, वो तो है, आपके यहाँ आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
0: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बैंगलोर जाना, और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
1: जी जी जी,
0: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
1: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
1: जी जी,
0: तो मुझे एक वीर जारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में, ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नजारे देखकर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं कहाँ।
1: क्या बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जी कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा, और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत, इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, बदौली, रेवत पुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये पड़ौली, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, ढेकी डोली, एरंड, नवापारा, घटगांव, बरडाण, दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये अम्बाचुआ, जामटोली, टुकुपानी, बोडालता, कूड़े केला, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 106 है। ये कूड़े केला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार, गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये चारमार, नागदरहा, पंडरी पानी, चिमटा पानी, बंगुरसिया, जुनवानी, भैंस गढ़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सहिया भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओर, ताराझर, डडई पानी, होलापारा, बुडार, जिडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकी पारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल न करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
2: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आपने सुना। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था।

0: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम शाम में गजल। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर द्वार शाम 5:30 पर। इसमें आज चर्चा का विषय रहेगा वन है तो धरती पर जीवन है। वन महोत्सव के अवसर पर यह चर्चा सुनिएगा। साथ ही सुनिएगा सहकारिता से करे सपने साकार। और इसके अलावा आप सुनेंगे सबका सपना घर हो अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना। और साथ ही सुनिएगा क्रम माटी के गीत, छत्तीसगढ़ी फरमाइशी लोकगीत। हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से शाम 6:00। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:10 पर। शाम 6:20 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:45 पर। फिल्म संगीत एक बार फिर हम लेकर आएंगे शाम 7:00। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसानवाणी हमेशा की तरह शाम 7:20 पर। कार्यक्रम किसानवाणी में आज चर्चा का विषय रहेगा अपनी आमदनी बढ़ाएं, खेती में उन्नत किस्में अपनाएं। साथ ही सुनिएगा नसीहत किसानों की समृद्धि का आधार किसान क्रेडिट कार्ड। और साथ ही सुनिएगा आज का टिप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत रात्रि 8:30 पर आप सुन सकते हैं। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम में रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:00। हमारे केंद्र से कार्यक्रम विविध संगीत सुनिएगा रात्रि 10:00 से। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के मैच का सीधा प्रसारण रिले करेंगे रात्रि 10:30 से 11:00 तक और 11:10 से मैच के समाप्ति तक। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शामे गजल। पहले सुनिए अशोक खोसला की आवाज में ये गजल।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: पंकज उदास की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी, आहिस्ता कीजिए बातें।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम शाम गजल, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

तो आज के ई बैठकी में हमन का गोट बात आपसे करबो तेकर चर्चा सबसे पहली तबे नहीं हो आज के गोट में हवे वन है तो धरती पर जीवन है वन महोत्सव आओ बहनी हो चर्चा के विषय रही सहकारिता से करे सपने साकार योजना में आज के विषय हवे सबका सपना घर हो अपना प्रधानमंत्री आवास योजना बनी हो ये तो योजना चर्चा गुड बात हो बेच कर ही और संगे संग बनी हो महीना के पहली गुरुवार में आप मन लगा रहे थे आप मन के अपन फरमाइशी छत्तीसगढ़ी लोकगीत क्रम माटी के गीत के तसुनबो गुरतुर लोकगीत आप मन के फरमाइशी लोकगीत माटी के गीत और बहनी हो ता हमन अपन के गोठ में आज आगू बढ़बो ता वन है तो धरती पर जीवन है बहनी हो जुलाई के पहली सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाते हैं जो कि चलत हवे और बहनी हो ये महोत्सव में हम सबला पौधा लगा के अपन भागीदारी सुनिश्चित करना हवे वृक्षारोपण करके हमन हा अपन पर्यावरण के प्रति अपन समर्पण प्रेम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता दिखा सकथन और एकर जरूरी भी हवे आज के समय में और बहनी हो यही जो वन महोत्सव मनाए के उद्देश्य भी यही हवे कि हर मनसे ला अपन पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना हवे पर्यावरण सुरक्षित है ता हम सब ये धरती में जो जतेक भी जीव जगत है वो सब सुरक्षित है ता हम अल्लाह जरूर करके अपन के पर्यावरण के ध्यान रखे के हवे वन के हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हवे वन ही ता जीवन सुरक्षित है काबर की वन से ही देखा तो वर्षा में सहायक हवे और फिर हमर बर जीवनदायी हवा ऑक्सीजन भी तो पेड़ पौधा मन से ही मिलते पेड़ पौधा हर प्रकार से हमर बर हमन देखथन हवा के रूप में पानी माटी सब ला सुरक्षित करके राखते जीवन के पहली प्राथमिकता हवा जो कि हमर बहनी हो कि अगर जीवन रहना है तो हवा हमन ला मिलना चाहिए पानी मिलना है और माटी रहे खाए पिए उपजाए बर भी तो लागते ना तो ये सब सुरक्षित हो ही कब जब वन रही है ना और भोजन के व्यवस्था भी तो पेड़ पौधा के माध्यम से ही होत हवे पेड़ पौधा हर रूप में हमार बर उपयोगी हवे आज प्रदूषण के ये दौर में पर्यावरण प्रदूषण से बहुत नुकसान हुआ थे इला बचाए के एकमात्र उपाय हवे पेड़ लगाना आउ वन जंगल के संरक्षण करना जो बचे हुए है उला बचा के रखना बनी हो ताकि ये धरती में न सिर्फ मानव जीवन बल्कि जैव विविधता सबो जीव जंतु मन भी सुरक्षित हो ये कर से अगर पर्यावरण संतुलित करना है तो हम अल्लाह अपन ये सजगता दिखाना हो ही कि हम सब ला पेड़ पौधा लगाना हो ही और हम सब के ये प्रयास रहे कि जंगल ला बचावन और नावा पौधा रोपण करन और बहनी हो सिर्फ पौधा लगाना नहीं बल्कि पौधा ला लगा के उकर पेड़ के बनत तक ले देख रेख करना भी बहुत जरूरी है तभी ये जो वृक्षारोपण है वो सार्थक हो ही तबहनी हो अपन पर्यावरण के प्रति आप मन भी सजग रहो काबर की कल हमर हमन चाहतन कि अगर हमर लोग लैका मन बढ़िया सुघर अकन ले स्वस्थ जीवन जिए सुरक्षित जीवन जिए ता हमला ए प्रति सजग रहना है और वृक्षारोपण जरूर करना है और पेड़ बनत तक ले उकर देख रेख और साथ संभाल करना है उकर बात तो पेड़ पौधा मन खुदे अपन देख रेख कर लेते बहनी हो उकर बात तो पेड़ पौधा मन कैसे है कि हम अल्लाह देते ही मन हा चाहे हवा के रूप में फल फलहारी के रूप में हर तरीका ले परोपकार जो है वो पेड़ से हमन देख बेच कर थन तो जरूर करके ए प्रति सजग रहा और पेड़ ला लगावा बहनी हो ये तो हो इस आज के हमार गोट कदे और हमन हा अपन गोट चर्चा में अब आगो बढ़बो लेकिन आज आप मन लागर रहे थे माटी के गीत के ता चला चली डहर फरमाइसी छत्तीसगढ़ी लोकगीत के

माटी के गीत मा आप सबो श्रोता संगी संगवारी बहनी मन के स्वागत हवे। और आज आप मन के संग मैं हवा आप मन के अपन रेडियो संगी रीना साहू। तो शुरू करी आज के माटी के गीत जो की हवे आप मन के फरमाइशी लोकगीत। तो बहनी हो आज आप मन हा पहली फरमाइश करे हो गीत हवे हम परसा कस फूल हो गए संगी। स्वर हवे साधराम मरावी सैल बाला ध्रुव औ सुरेखा केवट। और आप मन पसंद करता संगी संगवारी मन हवा रानी गांव नगरी जिला धमतरी ले खिलेश कुमार साहू चित्ररेखा साहू शुभम सेजल साहू। और मिठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ ले हवा गेंदलाल श्रीवास कौशल श्रीवास बिहारी पटेल लक्ष्मी बरेठ लक्ष्मण वाधवानी औ गेंदु भाई। ग्राम मेचका सोंढूर नगरी ले हवा भूपेंद्र नाग पूर्णिमा नाग निखिल नाग तरुण दीप नाग। पलारी छत्तीसगढ़ ले हवे नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पुनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन। माँ महाया चौक मेघापारा ले हवे रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल और टेकराम पटेल। आओ बहनी हो आओ संगी मन हवे ये संगी मन हवे जो कि हमला ये सबो संगी मन हवे जो कि हमला लिख भेजी है ईमेल के माध्यम से। आओ ये संगी मन बहनी हो हवे जो कि लिख भेजी है अपन चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपन पसंद करते हैं। आओ ये संगी मन हवे बगबुड़वा पथरिया ले हवे नरेन नेताम कुसुम नेताम प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। और भुरसुदा ले हवे भगवानी संतोषी सेन गजेंद्र चिराग सेन चंद्र प्रकाश नेहा सेन। और ये संगी मन हवे हरदेवला पारावाड़ सिमगा ले हरे रमेश कुमार यादव श्रीमती माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव। ग्राम खट्टी जिला महासमुंद ले हवे सुभाष शर्मा छाया शर्मा टिकेश्वर साहू कीर्तन साहू शिवाय साहू और अंशिका साहू। तो आप मन की फरमाइश में चला सुनिए लोकगीतला।

बहनी हो, देखा तो अब खेती बाड़ी के दिन आते, पानी गिरा थे कदेवा है नी, ता ऐसने में हमारे संगी संगवारी मन हा गीत सुने के फरमाइश करीन हवे, जो कि गीत हवे उठे घटा बादर के। धुरवा राम मरकाम और दुखिया बाई के स्वर में आप सबो संगवारी मन हा सुने के फरमाइश करे हो। और संगे संग गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार ले हवे जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी। बिलाईगढ़ ले हवे रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन। डोंगरगांव राजनांदगांव ने हवे राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये, धमनी किरवई जिला गरियाबंद ले हवे ईश्वर लाल धीवर, सीमाबाई धीवर, खुलेस्त लक्की पुरवा, नेहा रोशन धीवर। चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले हवे पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविन्द्र रौनक सेन। और ये संगी मन हवे बहनी हो रुआ बांधा सनीचरी बाजार भिलाई ले हवे सुशील जैन, श्रीमती कल्पना जैन, सौरभ शुभम जैन, श्रेया जैन और शौर्य जैन। हिच्छा महासमुंद ले हवे अदालत दास वैष्णव, मानस शांति, शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव। करही भदर बालोद ले हवे शारदा निर्मलकर, चंद्रिका निर्मलकर और जमुना निर्मलकर, राधा निर्मलकर, माहेश्वरी निर्मलकर और लोचन विद्यार्थी गीतिका गुड़िया। और ये संगी मन बहनी हो हवे जो कि सुने के फरमाइश तो करीन हवे और ये मन हल्ली की भेजीन है चिट्ठी पत्री के माध्यम ले। ये संगी मन हवे रॉबर्टसन दर्रा मुड़ा ले हवे लंबोदर प्रसाद और उकर संग संग संगी हो हवे फलेंद्र कुमार, तेजराम, सुरेंद्र कुमार, पीयूष कुमार, कृष्ण कुमार और हेमंत कुमार, राम ख्याल, तुलाराम, रूप बसंत, मानस, हरिशंकर देवा, सफादर पटेल। और एक संग संग संगी मन हवे श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ ने हवे लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष खुशी और शुभम वाघवानी और राजपाल खिलवानी। एक संग संग और संगी मन हवे अमलेसर ले हवे श्रीमती सुमन ठाकुर, तारिणी ठाकुर, ज्योति ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। तो चला बहनी हो आप मन के फरमाइश में सुनिए लोकगीत ला।

बहनी हो देखा तो बादर पानी तो गिरिस, और जैसे ही बादर पानी गिरते ताहने चारों डहर हा बढ़िया सुघर अकन ले हरियर पाना दिखत रहते। और ऐसने ही गीत सुने के पसंद करते हैं हमारे संगी संगवारी मन हा केदार यादव और साधना यादव के स्वर में। गीत के बोल हवे बागे बगीचा दिखेला हरियर। और ये संगी मन है जो कि ईमेल के माध्यम से लिख भेजिन है, रायगढ़ वार्ड नंबर 3 ले हवे रोहित जयलक्ष्मी, ग्राम पुतकी कला कवर्धा ले हवे राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे, सुमांशु पांडे। नानघाट कातल बोल ले हवे भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत। लोरमी मेघा पारल हवे टेकलाल पटेल, जंगबाई पटेल, सीमा पटेल, रीना पटेल, दीपांजलि पटेल और दिव्या पटेल। सहसपुर लोरमी ले हवे छोटकू साहू, मोहित साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई दुर्पति। और मेघापारा लोरमी ले हवे मनोज कुमार, धनंजय कृष्ण और कुमारी गायत्री साहू। और ये संगी मन हवे ग्राम पुरेना खपरी ले हवे बलौदा बाजार ले, नाम हवे अनीता साहू, अनुष्का साहू, उषा साहू। मदनपुर कवर्धा ले हवे श्रवण कुमार, योगेश साहू, राहुल साहू। रुआ बांधा सनीचरी बाजार भिलाई ले हवे सुशील जैन, श्रीमती कल्पना जैन, शुभम जैन, श्रेया जैन, सौर्य जैन। हिच्छा ले हवे महासमुंद, अदालत दास वैष्णव और मानस शांति वैष्णव, रिचा गायत्री वैष्णव। करहीबदर बालोद ले हवे शारदा निर्मलकर, चंद्रिका निर्मलकर, राधा निर्मलकर, माहेश्वरी निर्मलकर, लोचन विद्यार्थी, गीतिका गुड़िया और जमुना निर्मलकर। और ये संगी मन हवे जो कि लिख भेजिन है चिट्ठी पत्री के माध्यम से ये गाना के फरमाइश करिन है सुने के, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी ले हवे सिहावा पर्वत अंचल ले ग्राम बेलर गांव, मधु देवांगन, लक्ष्मी सावित्री, प्रभा रूपा, संगीता देवांगन। और ये संगी मन हवे मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटेल हवे नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। ये संगी मन है महामायापारा ग्राम दरचूरा ले हवे फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी साहू, प्रीतम कुमार साहू। और दरचूरा ले ही हवे ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू। और ये संगी मन हवे पाहरा अहिवारा ले जिला दुर्ग ले हवे पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर। और ये संगी मन हवे बंगला मटिया बालोद ले हवे शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रियंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। तो आप सबके फरमाइश में चला सुनिए कुर्तुर लोकगीत ला।

संगी हो जब पानी बरसात होते ता सबो डहर हरियर पाना तो दिखते और संगे संग बूता गजाते हमारे किसान भाई बहनी मन के और ओ मन अपन तैयारी में रहते अपन नागर और हाथ में तुतारी धर के दिखे देख डरथन खेत डहर जावत और ऐसने ही बेरा में गीत सुने के फरमाइश करीन ही खांद में नागर और हाथ में तुतारी उम्मीद मोह भटिया के स्वर में ये लोकगीत सुने के फरमाइश करता हमारे संगी संगवारी मन हवे हटौद बाजार लाहौद ले हवे कमलनाथ पटेल राकेश पटेल समीर पटेल और राजकुमारी पटेल मुंडा टोला डोंडी लोहरा ले हवे डोमेंद्र नेताम गंगेश्वरी नेताम चंचल नेताम कामेश नेताम माहिर नेताम कोहका भिलाई ले हवे उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल धमधा ग्राम सुखरी कला ले हवे अमित जंगेल सकुन जंगेल आरुषि ओशिका आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल लुकापाली ले छतवन जिला बलौदा बाजार ले हवे पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिंह निहारिका सिंह पंकज सिंह सूर्यवंशी और भाटापारा छत्तीसगढ़ ले हवे हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू और अनूपपुर मध्य प्रदेश ले हवे जय मंत्री केवट और ये संगी मन हवे जो की लिख भेजी है चिट्ठी पत्री के माध्यम ले ग्राम भर्री टोला डोंडी बालोद ले हवे नमित कुमार गौतम पीहू नीतू मुरली गौतम ये संगी मन हवे बहनी हो सरम पाल ले हवे भागवत देवांगन पदुम देवांगन कुमारी सुनैना पिंकी यश शीतल मामा प्रियांश तन्वी नीता चंद्रवती और गीता युवराज घासी मामा और रामचंद्र जी देवांगन और समस्त नंदर परिवार है कुटुंब के हवा मन जो कि कोष्टापारा जुड़वा चौक सरंग पाल ले हवा और ऐसने ही संगी मन लिख भेजिन है तो बहनी हो चला सुनिए आप मन के फरमाइश में ये गुरतुर लोकगीतला

बनी हो, ये तो आज के क्रम रही से कदेवा आओ माटी के गीत ला ऐसने ही अपन माया दुलार देवत रहा आओ लिखत रहा ईमेल आओ चिट्ठी पत्री आओ हुआ थे जाए के बेरा तो देवा विदारी नाला राम राम जय जोहार। तबनी वो अभी सुने गुरतूर लोकगीत के माटी के गीत के क्रम ला आओ देखा तो हमन हा अपन गोट चर्चा में आगू बढ़बो त सहकारिता से करे सपने साकार। बनी वो सहकारिता यानी कोनो भी काम ला एक दूसर के सहयोग लेवत हुए मिलजुल के काम करना हवे। जब लोगन मन हा एक दूसर के मदद करत हुए आगे बढ़ते तब बड़े बड़े लक्ष्य ला अगवा जाते पूरा कर लेते। ऐसे ही सहकारी समिति मन हा महिला उद्यम ला आगू बढ़ावत हवय आउ ओके संग संग किसान मन ला भी छोटे व्यापारी मन ला आगू आए के मौका देवत हे आए बर प्रोत्साहित करत हवय ताकि ओ मन हा रोजगार से जुड़े ओ मन ला आर्थिक सहायता और रोजगार में मदद भी करते। समूह में काम करत हुए आत्मनिर्भरता आर्थिक निर्भरता एकता और विकास ला बढ़ावा मिलते। सहकारिता से न केवल एक मन से पूरा समूह वर्ग के विकास होते बल्कि बहनी हो एक मन से के तो विकास होते ही होते साथ साथ पूरा समूह एक वर्ग के विकास होते। हमन हा एक गोट चर्चा ला बहनी हो आओ आबो ता गोठवाबो गोठियाबो का देवा आओ हुआ थे जाए के बेरा ता देवा विदारी नाला राम राम जय जोहार।

महिलाएं अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी घर द्वार। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत

0: गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:10 से आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में आप सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:00। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 7:20 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेगा अपनी आमदनी बढ़ाएं, खेती में उन्नत किस्में अपनाएं। साथ ही सुनिएगा नसीहत, किसानों की समृद्धि का आधार किसान क्रेडिट कार्ड। और इसके अलावा आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्म गीत आप सुन पाएंगे रात्रि 8:20 से। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45।

0: विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9 बजे। विविध संगीत हमारे केंद्र से सुनिएगा रात्रि 10 बजे से। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 10:30 से 11 बजे तक और 11:10 से रात्रि 2:45 तक। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: समाचार,
7: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हा आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करीन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला ले घलो आज ए योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। प्रदेश मा सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद मा जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही, उच्च शिक्षा मंत्री हा दिन निर्देश। औ राजधानी रायपुर मा 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही, मुख्यमंत्री हो ही शामिल। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा कहिन है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश मा रोजगार सुनिश्चित करे, ग्रामीण आजीविका ला मजबूत करे और गांव के विकास मा तेजी लाए के दिशा मा एक जरूरी कदम हरे। श्री चौहान हा आज तिरुपति जिला के मुक्कावरीपल्ले गांव मा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करिन। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए श्री चौहान हा कहिन कि ए योजना के उद्देश्य ए सुनिश्चित करना है कि कोनो भी गरीब मजदूर बेरोजगार ना रहे और सबोला रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत ले आज विकसित भारत जी राम जी योजना के

0: राज्यस्तरीय शुभारंभ होइस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा एक कार्यक्रम मा वर्चुअल शामिल होइन। कार्यक्रम मा उप मुख्यमंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप मा शामिल होइन। ए बेरा मा श्री शर्मा हा कहिन कि ए केवल रोजगार उपलब्ध कराए के योजना नहीं है, बल्कि विकसित गांव ले विकसित भारत के निर्माण के अभियान है। उमन कहिन कि केंद्र सरकार हा छत्तीसगढ़ बर 3,300 करोड़ रुपयों के प्रावधान करे है। श्री शर्मा हा बतायन कि योजना के तहत 318 प्रकार के काम शामिल करे गए है। एमा जन संरक्षण ले जुड़े 107, ग्रामीण अधोसंरचना के 90, आजीविका संवर्धन के 86 और आपदा प्रबंधन ले संबंधित 35 काम शामिल है। उमन कहिन कि अब जॉब कार्ड के जगह मा GRG कार्ड जारी करे जाही। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हा गंडई खुर्द के प्रदेश के पहली विकास काम के रूप में शेड निर्माण प्रस्ताव ला स्वीकृति दीन। प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्देश देगी। संगे संग ओमन नहा 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेज में प्राचार्य के पदोन्नति के प्रक्रिया पूरा करे बर कहिन। बैठक में बताएगी कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थी मन बर महाविद्यालय में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम घलो शुरू करे जाही। उन्हें सरकार हा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला स्नातकोत्तर स्तर में लागू करे के तैयारी शुरू कर दे है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होही। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक डहल्ले आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश भर ले किसान सहकारी संस्था के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होही। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होवैया ए 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत बनाए ऊपर चर्चा करे जाही। कार्यक्रम के उद्देश्य सहकारिता आंदोलन ला बढ़ावा देना और सहकार ले समृद्धि के संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्हें काली 3 जुलाई के बिहनिया 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करे जाही। सहकारिता के भावना के साथ एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर थीम में आधारित दौड़ में युवा विद्यार्थी किसान सहकारी संस्था के सदस्य और आने वर्ग के लोगन शामिल होही। दौड़ में पुरुष और माई लोगिन वर्ग के प्रतिभागी मन भर पहली दूसरैया और तीसरैया जगह के विजेता मल्ला आकर्षक पुरस्कार दे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिला के बम्हनीडी नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद मन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होइन। ए बेरा में चांपा SDM पवन कोसमाहा अध्यक्ष रमेश डटसेना और पार्षद मनला पद और गोपनीयता के शपथ दिलाइन। समारोह में मुख्यमंत्री हा बम्हनीडी दहिदा तक हसदेव नदी मा पुल बनाए बम्हनीडी मा विद्युत मंडल के सब डिवीजन ऑफिस खोले और मंगल भवन निर्माण के घोषणा करीन। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल हा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के लयिका मन बर ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तिथि 3 जुलाई ले बढ़ा के 12 जुलाई कर दे है। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल मा अपन आवेदन कर सकत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ले मुलाकात करीन। ए दौरान दोनों मंत्री मन के बीच महिला और बाल विकास ले जुड़े आने आने विषय में चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े हा केंद्रीय मंत्री ला बस्तर के दूर और जनजाति अंचल में संचालित योजना के प्रगति चुनौती और संभावना के जानकारी देन। राज्य सरकार हा आज बस्तर दुर्ग और बिलासपुर संभाग ले संबंधित नगरी निकाय बर 402 एल्डरमैन के नियुक्ति करे है। बिलासपुर नगर निगम मा 197, दुर्ग नगर निगम मा 142 और जगदलपुर नगर निगम मा 63 एल्डरमैन मन के नियुक्ति करे गए है। एकर पहली रायपुर संभाग के कतको नगरी निकाय बर घलो एल्डरमैन के नियुक्ति करे गई रही। राज्य सरकार हा

0: के शासकीय कर्मचारी मन बर अल्पावधि ऋण के सुविधा शुरू करे हे। ये सुविधा राज्य शासन के ई क्रोस कोष प्रणाली ले एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिया ले संचालित करे जाही। नवा व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपन पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण बर आवेदन कर सकी। आवेदन के बाद ई केवाईसी डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति के प्रक्रिया पूरा होए मा ऋण स्वीकृति और वितरण के प्रक्रिया जल्दी पूरा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहिन कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी मन के कल्याण और उकर आर्थिक सुरक्षा बर प्रतिबद्ध है। उहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा कहिन कि अल्पावधि ऋण सुविधा कर्मचारी मन ला जरूरत के समय तुरते वित्तीय सहायता उपलब्ध कराही और ओमन ला सम्मानजनक और सुविधाजनक वित्तीय विकल्प प्रदान करही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा प्रदेश के किसान मनले मौसम के परिस्थिति मनला ध्यान में रखत हुए खेती बाड़ी के समुचित योजना बनाए के अपील करे हे। उमन कहिन कि सरकार किसान मन के संग खड़े है। मौसम विभाग हा पहले ही बताए रहिन कि अल नीनो के कारण ए बछर मानसून कमजोर रही। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IMM मा अवैया 4 और 5 जुलाई के चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। दो दिवसीय ए शिविर मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होही। ए शिविर के उद्देश्य बदलत तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन ला और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार के अब तक की उपलब्धि चुनौती और भविष्य के प्राथमिकता के समीक्षा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहे है कि लगातार तीसरैया बछर आयोजित होवत ए चिंतन शिविर सुशासन ला ज्यादा प्रभावी पारदर्शी और जन केंद्रित बनाए के दिशा में जरूरी पहल है। युवा माइलोगिन किसान और नवा उद्यमी मन ला स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करे बर प्रोत्साहित करैया जिला व्यापार और उद्योग केंद्र डाहर ले काली 3 जुलाई के सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम मा तेजस कार्यशाला के आयोजन करे जाही। कार्यशाला मा विशेषज्ञ प्रतिभागी मन ला स्टार्टअप पंजीकरण आने आने शासकीय योजना बैंक ऋण वित्तीय सहायता मार्केटिंग ब्रांडिंग और व्यवसाय शुरू करे और ओला आगू बढ़ाए के बारे में जानकारी दी। संगे संग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करे के संभावना ऊपर घलो चर्चा करे जाही। दुर्ग पुलिस हा लगभग 1149 खाता के पहचान करके 39 लोगन मन ऊपर FIR दर्ज करे हे। ए मामला मा अब तक 165 लोगन मन ऊपर कार्यवाही करे जा चुके हे। जांच मा एक खुलासा होए हे कि आम लोगन के बैंक खाता ला म्यूल अकाउंट यानी किराया खाता बना के करोड़ों रुपया के साइबर ठगी करे गए हे। शुरुआती जांच मा ए आगू आए हे कि बैंक खाता के प्रयोग साइबर अपराध ले अवैया पैसा ला छिपाए और आने आने खाता मा ट्रांसफर करे बर करे जात रहिस। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हा आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करीन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला ले घलो आज ए योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। प्रदेश मा सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद मा जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही। उच्च शिक्षा मंत्री हा दिन निर्देश। और राजधानी रायपुर मा 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही। मुख्यमंत्री हो ही शामिल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आपने सुना ये वादा रहा फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। गुलशन बावरा के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत था।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
7: भारती।
8: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: जबाने को दिखाना है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, ऋषि कपूर, पद्मनी कोल्हापुरे और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था आरडी परमन ने।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: अमित कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आपने सुना लव स्टोरी फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी परमन।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना खेल खेल में फिल्म का गीत। गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे आरडी वर्मन। और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं,

0: कान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबीजी रामजी योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति से किया औपचारिक शुभारंभ। कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की। और रायपुर में कल से 2 दिवसीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह राजधानी के मरीन ड्राइव में होगी सहकार संकल्प दौड़। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
6: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
5: योजना के शुभारंभ अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि ये केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं बल्कि विकसित गांव से विकसित भारत के निर्माण का अभियान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 3,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की है। बिलासपुर नगर निगम में 197, दुर्ग नगर निगम में 147 और जगदलपुर नगर निगम में 63 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। इससे पहले रायपुर संभाग के कई नगरीय निकायों के लिए भी एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों से मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खेतीबाड़ी की समुचित योजना

0: बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
1: किसानों के साथ सरकार है और मौसम विभाग पहले से ही अवगत कराया है कि साल अल नीनो के कारण मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा और हम लोग भी कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को अवगत करा रहे हैं। उस हिसाब से किसान मतलब अपना खेती बाड़ी का पूरा योजना बनाए।
0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर चांपा एसडीएम पवन कोसमा ने अध्यक्ष रमेश डटसेना और पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री ने बमनीडीह दहिदा तक हसदेव नदी में पुल बनाने, बमनीडीह में विद्युत मंडल का सब डिवीजन ऑफिस खोलने और मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा राज्य शासन की ई कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण तथा सहमति की प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आगामी 4 और 5 जुलाई को चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि लगातार 3रे वर्ष आयोजित हो रहा यह चिंतन शिविर सुशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
1: 4 और 5 तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है। ये 3रा साल होगा। इससे काफी सहयोग होता है सरकार चलाने में, गुड गवर्नेंस के लिए काफी जानकारी। इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं कल 3 जुलाई को सुबह 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच महिला और बाल विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े ने केंद्रीय मंत्री को बस्तर के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों में संचालित योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों तथा संभावनाओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई से बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी है। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र और श्रमेव जयते ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के कंसबहाल और धारवाडीह सेक्शन के बीच मरम्मत कार्य के कारण 3 जुलाई से 17 नवंबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। ये मेगा ब्लॉक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अप और डाउन लाइन पर लिया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़ियां रद्द रहेंगी। इनमें हैदराबाद रक्सौल हैदराबाद, इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस और बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन में समाप्त होगी तथा राउरकेला दुर्ग के बीच रद्द रहेगी। युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार तथा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा कल 3 जुलाई को सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागियों को स्टार्टअप पंजीकरण, विभिन्न शासकीय योजना, बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में

0: उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने लगभग 1149 खातों की पहचान कर 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अब तक 165 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट यानी किराए का खाता बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध से अर्जित धनराशि को छिपाने और विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्री नारायण मीणा ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने सुंदर राजपी का स्थान लिया है, जिन्हें केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर एनआईए में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों और सांस्कृतिक दलों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारी को जीपीएफ में जमा राशि निकालने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीबीजी रामजी योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति से किया औपचारिक शुभारंभ। कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की। और रायपुर में कल से 2 दिवसीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह राजधानी के मरीन ड्राइव में होगी सहकार संकल्प दौड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने सुना विजयपत फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था जमीर काजमी ने और संगीतबद्ध किया था अन्नू मलिक ने।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे थे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और लीजिए आप सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी के बैठकी में किसानवाणी सुनैया जमो संगी संगवारी मल्ला आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के राम राम जय जुहार संगवारी हो कैसे हावा जी बढ़िया होइया आप मन कैसे बढ़िया कहा थे भैया हर कहा होइया अब तो हमर बूता काम हर गजागे अब कमर ला कसना पड़ी डोली खेत खार पार मेड़ सब ला ठिन्ना करना पड़ी अब बुआई नहीं करे हम तो बुआई करना पड़ी अब बहुत संगी संगवारी मन तो हमार हरा खाद बर जो ढेचा हावे एला बुआई भी करीन है तो और भी बाढ़ा थे तो ओला भी देखा थे और अपन के डोली खेत खार ला बढ़िया करे के तैयारी में लगे है संगियो बाकी धान की बुआई की बात करथन तो कई क्षेत्र में खुर्रा बोनी होगी से और खुर्रा बोनी के संगे संग कई क्षेत्र में चिखला लेही जोन लकथन ये बुआई बर ओमन अभी लगिन है तो संगियो ये बेरा मा हमला अपन के खेती किसानी मा बतर के हिसाब से काम काज ला करना पड़ी कैसे काम काज ला करना पड़ी देखा भैया हो जतका भी हमार कोचाई है आधा हावे हरदी हावे ये मल्ला हमला भी बुआई कर दाना है लगा दाना है एकर लगा करके बढ़िया मादा भर लेना है एकर संगे संग

मामला हमर जो पार मेड़ है, पानी बरसा तो अतका ज्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत क्षेत्र मन में हुआ थे। बरमकेला क्षेत्र है, लैलुंगा क्षेत्र है, वो क्षेत्र में आज अच्छा वर्षा हुई से, संग में हमारे रायगढ़ जिला के भी कई क्षेत्र में वर्षा हुई से और कई क्षेत्र में वर्षा नहीं भी हुई से। तो ये जो मौसम के बदलाव है, अलग अलग क्षेत्र में खंड वर्षा भी होते कई जगह में, और जम के जो बरसना चाहिए वो वर्षा अभी तक नहीं हो पाई से। तो आषाढ़ के महीना तो लग गए, आषाढ़ में रजराजा के गिरते मस्त पानी है गिरते, ये डोली ले वो डोली खेत खार में पानी है बहाय लागते। तो अभी होकर अगोरा हवे, नरवा ढड़वा सब और सूखा हवे, संगवारी तरिया नरवा जो भी हमारे पहली लबलबा रहे ऐसे जुलाई के महीना में, और अभी थोड़कुन सुखाए है। तो हमला का करना है संगी हो कि हमारे खेती किसानी के कामला बढ़िया सुघर तरीका ले करे बर कमर लकसना है, अपन के पार में लठिन्ना करना है और उन्नत बीज के चयन ला करना पड़ी। देखा संगी हो का होते, हमारे खेती किसानी में बढ़िया अगर बीज के हमन उपयोग करतन, उन्नत किस्म के बीज के उपयोग करतन, बढ़िया तकनीक ले अगर जुड़ करके हमन उत्पादन में लगतन, तो हमार उत्पादन हर का होते बढ़िया होते। अब बीज के अगर बढ़िया किस्म के बात करतन तो उन्नत किस्म जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र रहे या अनुसंधान केंद्र रहे, ओ मन के डहाले विकसित किए जाते। तो संगी हो ये जो विकसित किस्म होते वो किस्म के कुछ गुणवत्ता रहते विशेषता रहते, एकरे सेती ओला निसारा जाते। तो उन्नत किस्म के बात करतन तो उन्नत किस्म में जैसे हमर बात करतन संगवारी हो, अगर हमर धानेज के फसल है तो धान में का होते, अगर हमर डोली खेत खार हर गजहर खार हवे, गजहर खार याने समझा था संगवारी हो बहारा क्षेत्र है, तो ओकर बाद छत्तीसगढ़ देवभोग है 135 ले 140 दिन में तैयार होते। प्रति हेक्टेयर संगवारी हो एमा बात करथन तो 40 ले 45 क्विंटल सामान्य उपज है, अगर एला आप मन के कमाए धमाए के ऊपर है, आप मन हरा खाद के उपयोग करके लगाते तो और उत्पादन हो ही, मध्यम पतला दाना सुगंधित और खाए पर उपयुक्त रही थे। हर स्वर्ण सब वन भी है 140 ले 150 दिन जोन की गजहर खा रहे थे, जहां पानी ज्यादा दिन तक रहते नमी ज्यादा बने रहे थे, तो वहां पर ये फसल हर ये किस्म हर उपयुक्त है। ये हर काय संगी वो विशेष तौर से जो डुबान वाला स्थिति क्षेत्र हावे ओकर पर भी बढ़िया उपयुक्त हावे। बादशाह भोग है, तरुण भोग है, दुबराज है, विष्णु भोग है, सीआर सुगंधित है, धान 907 है, डीआरआर है, एकर अलावा डीआरआर के धान 50 है, डीआरआर धान के 51 है, सीआर धान के 312 है, एमन लंबा अवधि वाला फसल हावे। एकर अलावा संगवारी हो बात करथन तो ऐसे बहुत सारा किस्म इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दहार ले का किया गया से विकसित किया गया से, तो वो किस्म ला आप मन के लखठा के जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं, कृषि विकास अधिकारी हैं, आप मन के क्षेत्र के प्रगतिशील कृषक हावे, उन्नतशील कृषक हैं, ओ मन से आप मन ज्यादा जानकारी मिल सकत है कि कौन किस्म हर हमर बर उपयुक्त हावे। बड़खा किसान का करते संगवारी हो वो प्रयोग कर सकते, लेकिन छोटे किसान के पास का रही थे कम जमीन रहते सीमित संसाधन रहते तो वो प्रयोग नहीं कर पाए। तो जो किसान मन प्रयोग करते हैं, जो मन उत्पादन से जुड़ते हैं, तो वो संगी संगवारी मल्ला हमन कहना चाहबो कि उन्नत किस्म के बीज ला आप मन अपनावा और दूसर संगवारी मल्ला भी प्रेरित करा कि उन्नत किस्म ला अपनाथन तो का लाभ हो सकत है। संगी कम समय में बेहतर पैदावार मिलते अगर हमन पारंपरिक बीज ला उपयोग करते हैं, एक साल के ला अभी उत्पादन हुई से तो ला रख देते हैं, दूसरा साल बोर लेते हैं फिर बीजा के रूप में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन एकर से हमर उत्पादन प्रभावित होते। और एकर ताजा उदाहरण जो मिर्चा है, भाटा है, पताल है, एकर बीजा लगा के देखते ना, और सामान्य अगर हम उन्नत किस्म के लगाथन तो ओमा अंतर हमला देखे मिलते, धान में मिलते जरूर अहो में मिलते, उत्पादन 20 से 30 प्रतिशत तक प्रभावित जरूर होते। और जो उन्नत किस्म होते वो रोग और कीट रोधी रहते, तो रोग और बीमारी नहीं लगी, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगी, तो हमार स्वाभाविक रूप से संगवारी हमार खर्चा हर कम हुई। और मौसम के अनुकूल अगर हमन बात करथन, मौसम के अनुकूलन के बात ला लेके आथन, तो उन्नत किस्म जो ईजाद किए जाते, खोज किए जाते, अनुसंधान किए जाते, वो एक क्षेत्र विशेष पर सिफारिश भी किए जाते। कैसे, जैसे हमारे क्षेत्र पर कहना चाहिए जो उपयुक्त रही वही ले सिफारिश करते हैं।

उकर एक्सपर्ट मन वैज्ञानिक मन विशेषज्ञ मन तो मौसम के अनुकूल किस्म रहते तो एमा भी बीज हर या जो कहना चाहिए हमन चयन करथन और सूखा ला या बाढ़ ला या कीट रोधी जो कीट के समस्या रहते ओला सहन करे के क्षमता राखते। संग मा हमला संगवारी हो अभी के बेरा मा सही बीज के चुनाव करना है, देख ताक के बीज के हमला चयन करना है, प्रमाणित और विश्वसनीय संस्था से लेना है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो या राष्ट्रीय बीज निगम हो या सरकारी समिति मन के डहाल ले भी बीज वितरण किए जाते तो वहां से ले सकता है। माटी और जलवायु और क्षेत्र के हिसाब ले आप मन के भूया के हिसाब से आप मन का करे संगवारी हो किस्म के बीज के चयन करा। एक चीज हो ही आप मन पर कहना चाहबो कि अभी थोड़ कुन हमन सामान्य बछर के हिसाब से बात करते हैं, पाछू बछर जो गी से गुजरी से तेकर हिसाब से पानी एदारी अभी तक कम गिरी से, तो अवैया दिन में अगर हमन बरखा अवधि के फसल लेबो तो थोड़ कुन सिंचाई पर सोचना पड़ी, आगू हमन कहां ले करबो तेला, तो ये हिसाब से भी आप मतलब बीजा ला चयन करना है। बीजा जब भी लेते तो का टैग लाइन टैग रही थे, टैग लगे रही थे, उमा एक्सपायरी डेट रही थे, पंजीयन क्रमांक रहे थे, निर्माता रहे थे, वो सब चीज ला रहे, अंकुरण प्रतिशत रही थे, तो ये सब चीज ला देख ताक करके आप मन ले आ, और संग मा जो भी फसल ले था उमा बीज उपचार जरूर करो। तो संगियो बीज उपचार करिया तो फसल भी उत्पादन बढ़िया रही, रोग बीमारी ले लड़े के क्षमता बढ़ी, माटी जनित रोग है या वातानुकूलित जो रोग बीमारी है उकल ले लड़े के क्षमता बीज मा ताकत आ जाती। तो संगियो ये टीकाकरण ला हमला करना है अपन की बीज मा बीज उपचार के माध्यम ले। तो संगियो चला कार्यक्रम में सुनी एक ठन संदेश ला।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो संगवारियों, संदेश ला सुनन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में बताया जा रही है। वास्तव में संगवारी हो, बहुत ही बढ़िया योजना हावे, स्कीम से हमें जुड़ना चाहिए। और संगी, जब हम बचत नहीं करबो तो भविष्य हमारे सुरक्षित नहीं रहे। ऐसे संगवारी भूइयां ला भी जतन करना पड़ी, भूइयां ला बचाना पड़ी, भूइयां के जो उर्वरता क्षमता घटत जाते ओला बरकरार रखे बर हमला कुछ उपाय और करना पड़ी। तो संगी हो, हमन आज चर्चा करें एक बारे में। तो हमन आप मन से जानना चाहबो आज के कृषक प्रश्न मंच के तहत जो है आप मन की उत्तर। तो आज के अमर प्रश्न रही संगवारी हो, खेती किसानी में उन्नत किस्म ला अपनाए ले का लाभ होते। खेती किसानी में उन्नत किस्म ला अपनाए ले का लाभ होते, आप मन एकर जवाब लिख भेजिए हमर डहार। और ये रही से आज के कृषक प्रश्न मंच के तहत प्रश्न। अब देखा मैं कहत रहे कि भूइया ला सुधारना है, माटी ला बढ़िया रखना है, तो एकर बर किसान का कर सकते, हमन कैसे जैविक खेती की ओर अग्रसर हो सकत हन, कैसे ढेंचा खाद ला हरी खाद में तब्दील करके ओला हमन बढ़िया उपयोगी बना सकत हन, एकर विषय में संगवारी हो हमला बतात हैं। लैलुंगा क्षेत्र में खेती करने वाला हमारे जो भाई हमें संगवारी हमें अजय सिंघानिया जी, ये मन से मोर बातचीत हुई से, तो आवाज सुनी ओ मन के जुबानी ये विचार ला।
4: संगवारी हो, राम राम, जय जुहार। रायगढ़ से 80-85 किलोमीटर के धुरिया मा लैलुंगा विकास खंड है और लैलुंगा विकास खंड के जो क्षेत्र हावे वो क्षेत्र अपन के पहचान, अपन के जावाफुल चावल के, जावाफुल धान के उत्पादन प्रसंस्करण पर जाना जाते। ऐसे में क्षेत्र के किसान और किसान के अलावा अन्य क्षेत्र के जो संगी जोहरिया है, सब जन पूर्ण रूप से खेती करे पर आगू आवत है जावाफुल धान के। ऐसे में हम संगवारी हो एक ऐसे मनखे से, ऐसे व्यक्ति से हमन भेंट करत हन जोन मन खरीफ पूर्व अपन खेत के बेहतर तैयारी और प्रबंधन करत है, काबर करत है, कैसे करत है, ओ मन से जानबो। सबले पहली भैया राम राम, जय जोहार।
5: राम राम, जय जोहार।
4: हाँ भैया, परिचय बताइए।
5: मोर नाम अजय सिंघानिया है।
4: हाँ हाँ,
5: मैं

0: से तो किसान ला अपन भरपूर और मेहनत के उत्पादन के फायदा मिलत है,
1: मिलत
0: है। लेकिन मोटा धान से ये फायदा है कि ओमें जो फसल होते है तो पैसा जरूर मिलते, ओमें अलग से कोई पहचान नहीं है। तो विचार मन में ये आई कि अतेक लंबा चौड़ा एरिया में जो अपन खेती करा था और वो पैसा मिल जाते लेकिन कोई अलग से पहचान नहीं होते। और छत्तीसगढ़ शासन के रायगढ़ जिला जो जो रायगढ़ जिला के प्रभारी हैं, जिला के डीडीए साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, पिछले कई सालों में वो मेहनत करके लैलूंगा के जो प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त जो जौफुल चावल रेस बोला, वो मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मतलब मान्यता दिलाई ने, पहचान दिलाई ने। आज स्थिति ये है कि किसान मन मोटा धान के साथ साथ पतला धान जौफुल धान ला कमाए की इच्छा प्रकट करते हैं और जौफुल धान ला कमाते हैं। और कमाए से जो मोटा धान से जबकि पैसा मिलते है एक एकड़ में उत्पादन से, ओकर से भी कम उत्पादन होने के बाद भी ज्यादा पैसा जौफुल चावल के मिला थे। वो इसलिए मिला थे कि यहाँ ले चावल बाहर जाते और कृषक मन समूह बना के उत्पादन करते हैं। रायगढ़ जिला प्रशासन जो है ओला एक नाम दी से जो केलो जौफुल के नाम से प्रसिद्ध है। केलो के नाम ले दे पूरा हिंदुस्तान में लोगों ने मतलब पता है कि यार सुगंधित चावल अच्छा चावल है और बड़ा महंगा रेट में बेचाते
1: जी।
0: और महंगा रेट में बेचाते तो ओकर पर मतलब मारा मारी होगी से, मतलब जबकि आदमी चावल चाहिए बाहर के मल्ला उतकी चावल उत्पादन होत
1: नहीं होते।
0: इस साल अभी सुने हो मैं कि कलेक्टर साहब डीडीए साहब मिलके धान उत्पादन के जो चावल उत्पादन के जो क्षेत्र रेस लैलूंगा ब्लॉक के ओला जस्ट डबल कर दी ने।
1: अच्छा,
0: ओकर जस्ट डबल करे लिए फायदा हुई कि बाकी और जगह के आदमी मल्ला जहाँ चावल नहीं मिलत थे खाली ओमन नामे सुने रही कि भाई जौफुल चावल है, बहुत सुंदर चावल है, अच्छा चावल है, वो चावल अब ओमन ला भी मिली। और लैलूंगा क्षेत्र के किसान मल्ला बाहर जब चावल जाई तो ओमन के एक अलग पहचान बनी और ओमन ला ज्यादा पैसा मिली। तो खेती किसानी में जो मन लोगों के मन में भावना आते कि खेती किसानी करे ज्यादा फायदा नहीं हुए, ये गलत बात है
1: जी।
0: अगर अच्छा ढंग से खेती किसानी किया जाए, अच्छा उत्पादन लिया जाए, सही ढंग से ओला जैविक ढंग से ऑर्गेनिक ढंग से रसायन का प्रयोग न करके, कीटनाशक का प्रयोग न करके अगर उत्पादन लिया जाए तो और दूर दूर से एकरा मांग आई और जो रेट है ना वो किसान ला ज्यादा मिली तो किसान ला फायदा हुई।
1: तो अजय जी, आप मन से हम जानना चाहबो कि आप मन के तैयारी चलते खरीफ पूर्व खेत के, तो ये जो खेत अभी समतल कर रहे थे इन्हें कहा लगाए के विचार है आप मन के?
0: ये खेत जो रीस अभी जो अपन देखा था पूरा एरिया में लंबा लंबे छोटे छोटे खेत मन रही, तो जब मोटा धान लगाए जाते ना तो छोटे छोटे खेत मन में चल जाते, उसमें रासायनिक प्रयोग भी होते, कीटनाशक प्रयोग भी होते। आज के जमाने में हाइब्रिड चावल धान आ गई ने, जब तक अपन रासायनिक डीएपी यूरिया खाद और आनी बानी के खाद मन ला जब तक नहीं डालबो तब तक उत्पादन नहीं हुए, और खाद ला डालबो आनी बानी के तो कीटनाशक प्रयोग करे बल लागी, जम्मा अत्यधिक किस्म की दवाई लागते, इतना किस्म के कीड़ा आ जाते, एक कीड़ा मार के खत्म करो दूसरा कीड़ा आ जाते, दूसरा कीड़ा मार दो तीसरा कीड़ा आ जाते। जब फसल उत्पादन की स्थिति में आते और जब धान के बाली और भरा रहते वो टाइम कटवा आ जाते, बिना धान कटवा लू देते तो आदमी वो में भी फाइनल स्टेज में भी जब कीटनाशक का प्रयोग करते तो अपन जो चावल ला खाता ना वो चावल नहीं है, वो जहरीला खा है। वो जब से जहरीला खाना शुरू करी ने तब से बीपी शुगर थायराइड कैंसर कैंसर के कारण ही जहरीला खाना
1: जी। तो आप मन से ये जानना चाहो कि आप मन ये खेत ला उपयोग करा थे दारी
0: ये साल, ये जो खेत मल अपन देखे छोटे खेत मल में बड़ पहले बात तो बड़े बड़े बनवाए और एक लेवल मेला करवा दा रहे एकदम प्लेन खेत है। अब इनमें क्या करना है कि अभी अपन पास टाइम है एक महीना की, अभी अपन दो काम एक साथ करो। पहले बात तो खेतों के ला उर्वरा शक्ति बढ़ाए भर अब में वो ढेचा खाद एक थी बोलती जो शासन भी ओला मान्यता दे थे और ओकर कहना कि ढेचा खाद ढेचा आप बोइए और ढेचा बुआई करने के एक डेढ़ महीने के बाद जब तैयार हो जाए तो ओला फिर जो जूता के वही में कर दे ले और मजबूत अपन ला है ना खाद मिल जाए। तो अभी दो काम एक साथ करवो, अभी ढेचा की बुआई करवो जमा खेत मन में और साथ ही साथ दूसरा खेत में अपन थरा दे दो जौफुल के, तो जब तक ढेचा तैयार हुई तब तक हमारा थरा भी तैयार हो जाए
1: जी।
0: और अर्ली अगर लगाबो जल्दी ना तो हमें कीटनाशक के प्रयोग कम करे बल लागे नहीं करे बल लागे और कीट के प्रकोप भी कम हो जल्दी लगाबो तो
1: जी।
0: तो पहले ढेचा लगाबो और एक दिन मैंने जब तक तैयार हुई ओला करके ओला फिर मिसाई करके जुताई करके वो मजबूत खाद बन जाए, जब तक रेडी हुई तब तक हमारा थरा तैयार हो जाए और थरा भी लगा
1: जी। तो आप मन के जो जौफुल धान की खेती करे के विचार है कतका क्षेत्र
0: अभी ये 5 एकड़ में अपन सोचा था कि 5 एकड़

0: पूरा ईमानदारी के साथ लगाई, इसमें कहीं बेमानी नहीं करना है अपन ला। रासायनिक खाद के प्रयोग नहीं करना है, कीटनाशक के प्रयोग नहीं करना है, चाहे कतको कम उत्पादन हो
1: जी
0: वो चली अपन लेकर उत्पादन देखना है। ये साल अपन 5 एकड़ में करके देखो, अगर अपन अच्छा सफलता मिली तो धीरे धीरे रकबा ला अपन बढ़ावो, 10 एकड़ करवो, 20 एकड़ करवो,
1: बिल्कुल।
0: और आदमी मन ला अपन प्रेरित करवो कि भाई कीटनाशक के रसायन के उपयोग मत करो और इसी टाइप के है ना वो आप ऑर्गेनिक खेती करो।
1: बिल्कुल आप मन के कहना सही बात है। और आज के स्थिति में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, पुराना पुरखा की खेती के डहार आगो आवा जो पाछू के समय रासायनिक को सब त्यागा कहते हैं। तो आप मन के विचार बहुत ही सराहनीय है, काबर की जो समय में देखा जाए की माटी है नठात जाते दिनों दिन, और आप मन बोला बढ़िया आप मन टॉनिक के रूप में हरी खाद दिया और पूरा प्राकृतिक तौर से खेती करिए तो एक आप मन प्रेरणा स्रोत भी बन सका था। आप मन कहाँ से प्रेरणा मिली इस चीज में करिया करके?
0: ये प्रेरणा के स्रोत हमारे लोभन जी हैं
1: जी,
0: ललुंगा में जो लोभन सारथी जी हैं वो निश्चित रूप से एक लंबे समय से इसमें प्रयास रहते
1: जी।
0: वो कृषि विभाग के बहुत सक्षम अधिकारी हैं ललुंगा के, और चूंकि वो स्थानीय स्तर के हैं तो ओमन के लोगों से संबंध भी ज्यादा है, वो किसान मल्ला जानते भी। तो ओमन के मन में विचार है इस मोर हिसाब से, तो मैं जहां तक जाना था कि भाई यहां के जोफूल चावल का खेती ला बढ़ावा दिया जाए, वो काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। तो मैं जब जब मैं आजकल वो सोशल मीडिया का जमाना है
1: जी,
0: तो मैं उसमें स्टेटस में वो देख देख के इंस्टाग्राम में मोर भी मन में विचार है
1: कि
0: जब ये मन इतना अच्छा प्रयास कर रहे थे, छोटे छोटे प्रयास से जब इतना बड़ा सफलता मिल जाते थे तो मजबूत और बड़ा रूपेला दिया जा सके
1: जी जी।
0: तो मैं खुद लोभन जी से संपर्क करें और मैं कहें कि भाई मेरे को बड़ा स्तर पे वृहद स्तर पे इस काम को करना है, और इस काम में सफलता अगर मिलेगी तो इस काम को फिर कमर्शियल रूप से करना है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जोपुल के चावल के साथ साथ अपन बनाना है
1: जी। जो बहुत अच्छा बात है, आप मन के प्रेरणा स्रोत रही है लोभन सारथी जी। अमन भविष्य में उम्मीद करबो कि आप कोई दूसर के प्रेरणा स्रोत बना और बढ़िया से खेती करके क्षेत्र के नाम ला रोशन करा। अमर संग गोठियावा अजय सिंघानिया जी, एक बार आप मन बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार,
0: जय जोहार।
2: तो संगवारी देखा लैलुंगा विकास खंड के लैलुंगा के जो हमारे किसान भाई रही है अजय सिंघानिया जी, कैसे उमन के जोश जुनून रही से, और वो जोश जुनून ला अपन के खेत में भी उमन दिखात हैं, और खुद हमन संगवारी फील्ड में देखे हैं उमन के, तो बहुत बढ़िया उमन के तैयारी हावे और ढेचा के बुआई उमन करी है, और एकर लाभ दुनिया ला कहे का मतलब अपन के तीर्थ अखार के लोगन मन ला किसान मन ला भी बताना चाहते हैं, और कैसे हमन खेती किसानी में अपन की जीविका ला चला सकत हन, और खेती किसानी में हमन तकनीक ला कैसे बदलबो, भले हमन जैविक खेती करबो ओकर कीमत ला ज्यादा पाबो कहते हैं और बढ़िया हमन चीज देबो कहते हैं, उत्पादन करबो कहते हैं, तो हम सबो किसान संगवारी में ला अपन के उपज के वाजिब दाम स्वयं निर्धारित करे के क्षमता विकसित करना पड़ी। एकर बर किसान उत्पादक संगठन है उमा आप मन जुड़ सकता, और अपन के किसान जो है अपन के उत्पादन के वाजिब दाम वहां से पा सकते। तो बढ़िया विचार है अजय सिंघानिया जी के। अब चला कार्यक्रम में आगू बढ़ी और सुनी संदेश ला।

तो संगवारी हो कार्यक्रम में आगू बढ़बो और आषाढ़ के महीना चलत है तो ये दे आषाढ़ के महीना गीत ला सुनबो द्वारिका यादव और उनके संगवारी मन के स्वर में गीतर हावे आवा सुनी।

0: तो संगवारी हो देखा बढ़िया कैसे वर्षा के मौसम के आषाढ़ के महीना के पूरा वर्णन रही से कौन लोग लड़का मन डोंगा बना के चलाते हैं कौन का करते हैं पूरा हमार पारंपरिक जो रही से गीत रही से संगवारी हो द्वारिका या द्वारिका यादव और संगवारी के गायक गीत रही से बहुत ही सुघर गीत रही से ऐसे ही आओ गीत आप मन सुनाबो कार्यक्रम में थोड़ कुन अगोरा करिया। अब चला हमार जानकारी के ज्ञान के पिटारा ला खोला थन और आप मन तक साझा करत हन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। संगी हो किसान मन के समृद्धि के आधार हवे। पहली का रही से खेती किसानी करे बर बीजा भाथा बर साहूकार है या जोन भी गाँव में संपन्न है या जो भी महाजन रहे ओ मन से पैसा ला लें जी। और वो बेरा मा उत्पादन अतका होत रही से कि पेट पाठ हट चलत रही से यानी जीव को पार्जन होत रही से जीविका हट चलत रही से और आमदनी हर नहीं होत रही से। ऐसी स्थिति रही से कि पानी नहीं गिरे ले अकाल पड़त है कहले संगवारी हो धान चाउर जो भी होए भी नहीं फसल भी नहीं होए। काबर काबर की सिंचाई के साधन नहीं रही से और वाजिब दाम नहीं मिलत रही से समर्थन मूल्य नहीं रही से तो ये सब कारण के संगे संग रोग बीमारी भी लगे तोला महामारी जैसे करके ओला टाल दें। लेकिन आजकल तो कुछ भी रोग बीमारी लगा थे तो कर खोज अनुसंधान होते कावर होते कैसे नियंत्रण करबो ये तकनीक आगे से। और आज के दौर में देखो तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भी उपयोग होते तो फिलहाल समय के हिसाब से परिवर्तन होते लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड कैसे मददगार हवे। पहली के बेरा में जो ऋण लेना पड़त रही से तो ये हर का होत रही से एक फसल लेते किसान फिर ओकर ऋण चुकाए में ओकर ब्याज चुकाए में ओकर पूरा फिर खत्म हो जात रही से बचत नहीं रही से। तो आजकल का है बैंक के डहल ले या सेवा सहकारी समिति रहते वहाँ के माध्यम से किसान मल्ला पशुपालक मल्ला मछली पालक मल्ला का होते संगवारी हो केसीसी दिए जाते यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण दिए जाते लोन दिए जाते। तो ये है का है संगी हो इमा कि अगर निर्धारित समय में अगर जमा करते किसान भाई मन तो 3% के अतिरिक्त सब्सिडी मिलते जो 4% है तिहर नहीं तो 7% लागते अगर समय में चुकाते 7% के जगह 4% लागते। कुछ समिति मन में संगवारी हो ब्याज मुक्त ऋण भी दिए जाते। तो ये सब ला हमन ला काबर दिए जाते काबर की किसान ला बीजा के खरीदी मा दवाई के खरीदी मा मजदूर बनिहार के ओकर भुगतान करे मा या कोई यंत्र खरीदे मा ओ मला दिक्कत झन हो करके। लेकिन ओ पैसा के किसान फटफटी बिसाते कार बिसाते या अन्य काम मा ओकर व्यय ला करत है तो ओहर अवैया समय मा ओकर चुकता करे मा भुगतान करे मा संगवारी हो दिक्कत होते। तो एकर बर केसीसी के उपयोग ला सही ठौर मा सही काम मा लगाना चाहिए। सस्ता अगर कर्ज मिला थे ब्याज मा छूट मिला थे तो एकर मतलब नहीं हुईस कि हमन ओला गलत तरीका से उपयोग करी। और केसीसी के माध्यम से काहे संगवारी लिमिट भी बने रहे थे हर साल के अलग अलग लिमिट रही थे आप मन बढ़िया समय बखत बेरा में चुकता करा था चुका था तो आप मन के उकर साग बन थे बैंक में साग बन थे आप मन के कहना चाहिए क्रेडिट बन थे। तो संगी हो एकर से का है अवैया समय में भी आप मला आसानी से ऋण मिलते और लचीलापन में है ये एक लिमिट रहते वो लिमिट के अंतर्गत आप मन चाहिए तो पैसा ले निसार सका था नहीं चाह था तो वहीं रहन देवा ये भी सुविधा है जब दरकार है तो निसारो दरकार नहीं तो नहीं निसारो जी। तो ये केसीसी के माध्यम से किसान सशक्त बने मजबूत बने समृद्ध बने उन्नति करे प्रगति करे करके योजना ला बछर 1998 में लाए गिरी से। तो संगी 98 में शुरू हुए से और आज 2026 तक चला थे तो एक लोकप्रियता हावे और किसान मन भी बकायदा अपन के बात लाइला जिक्र करते हमन किसान मन से भेंट करथन उमन से चर्चा करथन। तो संगी हो ये रही से आप मन पर नसीहत के गोट संग मा आगू बढ़बो। और संगी हो अभी चलत है का अभी चलत है संगवारी हो वन महोत्सव सप्ताह तो ये मा हमन विषय हावे आओ मिलकर पर्यावरण संरक्षण करें और वृक्षारोपण करके जीवन धन्य बनाए और वन महोत्सव सफल बनाए। ये विषय में मृत्युंजय दास हमें लेंद्रा विकास खंड बरम के लाके ये मन से बातचीत हुई से पर्यावरण संरक्षण से संबंधी बातचीत तो आवास उन्हीं मन के बातचीत ला
1: संगवारी हो जल जंगल जमीन जेकर ले हावे जीवन संगी हो ये सबो मा संतुलन होना अब्बड़ जरूरी है। संगी हो ये कर संतुलन खातिर नाना प्रकार के दिवस मनाए जाते चाहे हमन बात करन विश्व पर्यावरण दिवस के वन महोत्सव सप्ताह के या विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाए के संगी हो सबो के मकसद ये हावे कि संतुलन बने पेड़ पौधा रुक रही के कटाव हर रुके पौधा के हमन संरक्षण करी वृक्षारोपण करी ये सब काम बहुत ही जरूरी है। ऐसे में संगवारी हमारे भेंट वार्ता के क्रम में हमारे बीच उपस्थित है शिक्षा के खावे जिन मन से हम जानबो कि हमारे प्रकृति के संरक्षण में और वृक्षारोपण में और कहना चाहिए कि जो जंगल एक प्रकार से जंगल के जो कटाव हो जाते हैं उनमें हमन कैसे रोक लगा सकते हैं हमारे का प्रयास हो सकते हैं एक बारे में जानबो। तो सबसे पहले तो संगवारी राम राम जय जोहार।
2: संगी राम राम जय जोहार। मैं मृत्युंजय दास।
1: हाँ तो मृत्युंजय दास जी ये बताया कि प्रकृति के संरक्षण कहाँ बड़ जरूरी है।
2: देखो प्रकृति के संरक्षण केवल हमारा दायित्व न है बल्कि का है हमन जो हमारे जत की बन सके लंबे समय तक हम हमारे जिम्मेदारी हमन बना सकन का है ओकर बारे में हमन जतकी सुरक्षा कर सकन तो आगे हमला चल के फायदा दी।
1: अच्छा आज के हमर जतन भविष्य पर बढ़िया समृद्धि ला सकत है का तो
2: हाँ।
1: एक ताजा उदाहरण हमन का सकतन का सकतन
2: जैसे ही हमन वर्तमान में जैसे हमन पेड़ पौधे लगा सकत हन वृक्षारोपण कर सकत हन और साल सागौन
1: हाँ।
2: जो छायादार नहीं होना चाहिए उसने पेड़ लगाना चाहिए
1: हाँ।
2: ओकर बार माने जैसे ओकर अलावा जैसे हमन घर में जैसे जगह कम है तो बालकनी या कुछ भी जगह में गमला के द्वारा भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं जो हरियाली ला सके।
1: तो बहुत अच्छा बात है कि अभी अगर हम पेड़ पौधा लगाबो तो और भविष्य में निवेश आवे का
2: हाँ।
1: और देखा था ना हम लगातार जंगल के जो कटाव है वो बढ़त जाते या जंगल में आग लगत जाते तो एकर पर हमार आम जन के उद्देश्य से या आम जन के हिसाब से हमन का सहयोग कर सकत हन एकर संवर्धन संरक्षण में।
2: सबसे पहले तो देखा कि पेड़ लगाना ही खाली कोई आम आदमी ना है माने कोई भी लगा सकता है ना है माने पेड़ लगा देना कोई ना है ओकर सुरक्षा भी जरूरी है। ओकर बार हमन कई तरह से ओकर प्रयास करथन जैसे स्कूल में लगाथन घर में लगाथन खेत में लगाथन और कई जगह लगाथन जगह जान के तो ओकर लगाए के साथ साथ ओकर सुरक्षा भी जरूरी है
1: हाँ।
2: ताकि हमला पर्यावरण बनाए रहे और हरियाली दे सके पहले पर।
1: अच्छा और का हो सकते है वंश के संरक्षण में संवर्धन में हमन का कर सकते
2: है। देखो वंश संरक्षण में हमन जैसे हमार जंगल में है जंगल में जैसे आग लगते तो आग लगते तो हमला का है वन विभाग ला सूचना देना चाहिए या मान ले अधून मान ले अपन घर उपयोग पर लकड़ी पर मान ले पेड़ ला काट देते है या फर्नीचर बका रहे हैं तो ओकर सूचना हमला वन विभाग में देना चाहिए और हमला सबला मिलजुल के ये प्रयास करना चाहिए की अधिक से अधिक माने पेड़ लगाया जाए और ओकर बारे में प्रयास किया जाए नहीं सब मिलजुल के माने सामूहिक रूप से ओकर सुरक्षा किया जाए।
1: एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डाले किया गया से और काफी ज्यादा वृक्षारोपण भी हुए तो संगियों हमारे भी प्रयास होना चाहिए कि जंगल के बचाव में हमन पेड़ लगाई वृक्षारोपण करी। एकर अलावा जैसे प्रकृति के संरक्षण के बात करते हैं तो जल ऐसे आवे

0: जैसे शुरुआत में कह रहे हैं कि जल जंगल जमी से हावे हमर जीवन के आधार, तो जल के भी बर्बादी ला हम लोग रोके पर प्रयास करना पड़ी, क्या कहना है एक बारे में?
1: हाँ, तो जल के प्रयास हमारा है कि जल के जो अधून हम का करते हैं पर फालतू में वही कर देते हैं, बेकार में उपयोग नहीं करना है नी।
0: हाँ।
1: जैसे कि हम बचत कर सकते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं, बर्तन धोते हैं, कुछ भी करते हैं नी।
0: हाँ।
1: तो वो समय में हमारा नल खुला नहीं छोड़ना है।
0: अच्छा।
1: जैसे मान ले हम सब्जी भी धोते हैं तो अगर इस्तेमाल को पानी ला हमला नहीं फेंकना चाहिए, वाला पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए।
0: अच्छा, जो किचन गार्डन बनाए
1: उपयोग करना चाहिए। या जैसे मान ले वर्षा के जल है तो हमला वही रखना चाहिए, क्या कहते हैं अपने घर में जो
0: रेन वाटर
1: हार्वेस्टिंग
0: भी अच्छी है, या जल संग्रह टैंक
1: बनाना चाहिए।
0: मतलब आप मन के कहना है कि पानी के बचत करना है और पुनः उपयोग करना है और वर्षा जल के संरक्षण
1: करना है।
0: बहुत अच्छा बात है। और वृक्षारोपण के बात करते हैं तो इनमें पेड़ पौधा लगाना ही हमारे दायित्व नहीं है बल्कि संरक्षण करना। अगर हम चाहतन वातावरण में क्लाइमेट में एक संतुलन बने रहे, एक बार हम घर के कुछ बालकनी है या जो ठाउर है वहाँ भी हम गमला में भी लगा सकते हैं।
1: हाँ, लगा सकते हैं,
0: है ना।
1: हाँ।
0: और आज की स्थिति में देखा था जैसे जल जंगल जमीन की बात करें तो जमीन भूया भी आजकल लगातार प्रदूषित हो जाते हैं।
1: हाँ।
0: का कारण लगा थे और हमने लग कैसे हम रोक सकते हैं?
1: अधिकतर का है हम प्लास्टिक के ज्यादा उपयोग करते हैं, जहाँ कहा फेंक देते हैं तो और सड़े नहीं और खराब करते है नी। हमला का है प्लास्टिक के बहिष्कार करना चाहिए और जो कचरा वही रहते जो मना निश्चित उपयोग करना चाहिए। जैसे की बताया था हमें, जैसे हम प्लास्टिक के बजाय जाते हैं तो क्या है हमेशा प्लास्टिक के थैला या भी उपयोग करते हैं, तो हमला का करना चाहिए प्लास्टिक के जगह में हमला कपड़ा या जो जूट के जो थैला थे उपयोग करना चाहिए।
0: हाँ, हाँ,
1: है नी।
0: हाँ।
1: और जैसे मान ले कचरा है गीला है सूखा वाला हम एक जगह डाल के वाला हम खाद के उपयोग में कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो और भी क्या है हम कचरा ला हम कम उपयोग कर, जैसे हम कम उपयोग कर सकते हैं और पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं जीवन में हम कर सकते।
0: मतलब आप मन 3R नियम के बात करा था कहा तो रिड्यूस रीयूज कहते हैं और रिसाइकल कहते हैं।
1: हाँ।
0: तो ये सब चीज ला अपनाना पड़ी। और जैसे हम बात करते हैं तो संतुलन पर जल जंगल जमीन में एक संतुलन बनाए रखे पर हमार जो ऊर्जा है ईंधन है एकर भी हम लोग बचत करना पड़ेगा।
1: हाँ, जरूरी
0: है ना। तो इसमें हम का प्रयास कर सकते हैं
1: ऊर्जा इंजन के बचत कर। हाँ, जैसे मान ले पहली है बिजली है, हम बिजली की बचत कर सकते हैं। जैसे मान ले हम कमरा ले बाहर निकलते हैं तो क्या है पंखा लाइट को चुके हमला बंद कर हम भूल जाते हैं, तो हमला बेकार में चालू करके रखना नहीं है, कहीं हम बाहर जाते हैं माने कमरा के लाओ स्विच ला बंद कर देना है।
0: अच्छा, अनावश्यक जलाना नहीं है कहा तो।
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: और उपयोग भी क्या जैसे सार्वजनिक जैसे जगह में रहते नहीं वहां का उपयोग करते हैं हम, जैसे आस पास जाए और हम मोटरसाइकिल में जन जाए पैदल जान या साइकिल में जान या सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उपयोग कर सकते हैं। और सौर ऊर्जा के भी उपयोग कर सकते हैं।
0: आजकल तो प्रधानमंत्री सूर्य और मुफ्त बिजली योजना के अभियान
1: चलाने में बारे में हम यूज कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा। और एक बार हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से हम का प्रयास कर सके, एक बार का हो सकते थे हमारे पहल
1: एक क्या है सामाजिक जागरूकता और हम विशेष रूप से हम शिक्षा दे सकते हैं अपने परिवार बच्चा जो भी आसपास के भी है दोस्त यार मल्ला कि पर्यावरण के महत्व के बारे में हम मल्ला जागरूक कर सकते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और स्वच्छता अभियान भी चला सकते हैं हमारे आसपास पास माने की तालाब कुछ कहीं सार्वजनिक जगह मल्ला साफ सुथरा रखे बोरा नहीं।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताओ आप मन। तो मृत्युंजय दास जी बहुत बढ़िया आप मन बता थे कि कैसे हम पहल कर सकते हैं प्रयास कर सकते हैं प्रकृति के संरक्षण में, जंगल के कटाव ला रोके बर जंगल के जो समस्या है कहे के मतलब ये कि आग लगती है सब में हम समाज के समुदाय की भूमिका जब तक नहीं हुई तो हम सफलता प्राप्त नहीं करन। तो आप मन बहुत अच्छा जानकारी साझा कर हमारे बीच में प्रकृति के संरक्षण के बारे में वन के बचाव के बारे में वृक्षारोपण के बारे में एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो संगवारी हो देखा कैसे अपन संदेश सुने ना, संदेश के पहली भेंटवार्ता से कैसे पर्यावरण संरक्षण कर सकत हन, कैसे हमन पेड़ पौधा लगा करके वन महोत्सव सप्ताह सफल बना सकत हन, एक बारे में बातचीत हो रही से। और समय के मांग है संगी हो कि भूइया ला मृदा ला स्वस्थ रखे बर, बढ़िया बनाए रखे बर, टिकाऊ खेती करे बर हमला जैविक कीट प्रबंधन ला करना पड़ी। समय के मांग है संगवारी वो बखत बेरा भी कहा थे कि आज के दौर में आता धुरा रासायनिक खाद के प्रयोग करे ले माटी हर कठोर हुआ थे, माटी में उपलब्ध जो सूक्ष्म जीव रहने उमन के संख्या घटत जा थे, ऐसने में संगी हो हमला समाधान की कोती ध्यान करना पड़ी, समाधान की कोती आगू बढ़ना पड़ी। एकर बर जैविक रूप से हमन कैसे कीट प्रबंधन कर सकत हन, तो एक तो वनस्पति अर्क रहे थे यानी पान पत्ता रहते जोन भी रहते संगवारी हो एकर माध्यम से कर सकत हन, जैव कीटनाशक के माध्यम से कर सकत हन, भौतिक और यांत्रिक उपकरण जो भी हावे ए मन के माध्यम से भी कर सकत हन हमन जैविक कीट नियंत्रण। संगी अगर बात करथन तो एमा एक चीज होते निमास्त्र, रस चूसे वाला जतका कीड़ा रहते छोटा इल्ली रहते एमन बर रामबाण दवा हुई सहर, एकर जो नीम के पत्ता रहते ओकर बीज रहते निबोली जोन रहते भीतर मा और गौमूत्र मिला के लिए तैयार किए जाते, तो एकर से इल्ली जो है नियंत्रित होते। अग्नि अस्त्र है संगवारियों तना छेदक और फल बेदक इल्ली मन बर काफी असरदार होते, नीम है और तीखा मिर्ची है, लहसुन है, तम्बाकू है, सब मिला के बनाए जाते। एक होते ब्रह्मास्त्र जेघर की बड़खा जो इल्ली रहते कीड़ा रहते ओमन पर काफी लाभप्रद रहते ओकर नियंत्रण मा, एमा करंज है, सीताफल है, धतूरा है, बेल के पत्ता है, गौमूत्र है, ये सब का उपयोग, ये सब के उपयोग किए जाते और बनाए जाते। एकर अलावा संगी हो जो मित्र फंगस से भी या बैक्टीरिया है एमा हमन बात करथन तो ट्राइकोडर्मा, यह एक मित्र फंगस होइस जहर संगवारी हो जो जड़ के सड़न है या उकठा रोग होते ओकर नियंत्रण में यह लाभकारी होते, बीज के उपचार में, भुइया के उपचार में यह लाभदायक होते। एकर अलावा संगवारी हो बीवेरिया बेसियाना, यह पाउडर और लिक्विड रूप में आते, एकर छिड़काव किए जा सकते और छिड़काव करते हैं तो इल्ली और सफेद मक्खी के एकर जो संगवारी वो ज्यादा रहती है वह नियंत्रित होते। एकर अलावा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, एयर भी फंगस और बैक्टीरिया जनित जो रोग बीमारी है एकर ले बचाते, रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते। एकर अलावा पीला और नीला चिपचिपा प्रपंच आते, यह भी सफेद मक्की थ्रिप्स या जैसिड जो रहते ये मल्ला आकर्षित करते और कीट ओमा जो है चिपक जाते। फेरोमोन ट्रैप होते संगवारी हो जो कि नर पतंगा ला आकर्षित करते, एकर से प्रजनन दर संगवारी हो बाधित होते। तो ऐसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, फसल चक्र परिवर्तन है, माटी के बीज के उपचार है, ये सब ला अगर हमन करबो तो संगवारी हो भुइया हर हमार स्वस्थ मस्त और टिकाऊ रही। तो संगी हो वर्षा के महीना चलत है आषाढ़ के महीना, तो वर्षा आगे रे संगी आवा सुनबो गीतला बुद्धि सागर शर्मा और संगवारी मन के स्वर्मा।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य।

0: किया।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: तो संगवारी हो देखा अब आगू बढ़वो चर्चा में शांति और संवाद का मार्ग संप्रभुता और आपसी सम्मान का आधार शिमला समझौते की वर्षगांठ संगियो हमारे देश के इतिहास में 2 जुलाई आज के दिन है बेहद बहुत बढ़िया मायने रखते काबर की आज ही के दिन 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हो रही से एकर मकसद ये संगवारी की जो 1971 में युद्ध हो रही से वो स्थिति में जो हालात रही से वाला देखते हुए स्थायी शांति स्थापित करे बे समझौता ला रखा गया रही से और ये समझौता में बात ये रही से कि संगियो की आपसी संप्रभुता का सम्मान करना है और द्विपक्षीय संवाद करना है लड़ाई झगड़ा करना नहीं है और बल के शक्ति के प्रयोग ला रोकना है और एलओसी ला हमला ध्यान में रखना है यानी नियंत्रण रेखा ला उल्लंघन नहीं करना है ऐसे कई मुद्दा ला लेके चर्चा हो रही से ये समझौता के वर्षगांठ के बारे में बात करते हैं तो संवाद के माध्यम ले भी हम समस्या के समाधान कर सकते हैं यह मुख्य उद्देश्य है कि हर जगह लड़ाई झगड़ा से हमला बचना है और आपसी संवाद के माध्यम से सलाह और सुलह करके आगू बढ़ना चाहिए। तो संगी हो ये रही से शिमला समझौता के बारे में सामान्य बातचीत एकर अलावा मैदान के हर हलचल को शब्दों में पिरोते खेल भावनाओं को जीवित रखते विश्व खेल पत्रकार दिवस यार हावे आज संगी हो और ये दिन ला खेल पत्रकार मल्ला जो कमेंटेटर होते हैं लेखक होते हैं खेल से जुड़े फोटोग्राफर होते हैं उमन पर समर्पित हावे जो खेल के मैदान के जो रोमांच रहते ओला अपन के लेखनी से बोलनी से या अन्य माध्यम से संगवारी हो पसीना बहा करके ओमन अपन के भावना ले फिर होते हैं और ओला हमर तक पहुंचाते हैं। आप मन भी रेडियो के कमेंट्री ले सुने हुई है कैसे लागते थे हर तो संगियो ये जो टीवी से जुड़े हैं चाहे डिजिटल स्क्रीन से जुड़े हैं या लाइव अपडेट से जुड़े हैं जो खेल भी खेल से जुड़े पत्रकार हैं सब बोला ये दिवस की शुभकामना है और एक बधाई भी है। तो संगियो आज अगर हम बात करबो तो आज के दिन भी खास है काबर की हमन धरती में जीवन ला बचाना है तो एक बार वन के संरक्षण करना पड़ी पेड़ पौधा ला लगाना पड़ी और वन महोत्सव सफल बनाना पड़ी। पेड़ पौधा जीवन के आधार हवे जेकर ले हमर संतुलन बने रहते और 1 जुलाई ले 7 जुलाई के माझा ला हमन मनाथन वन महोत्सव सप्ताह। बछर 1950 में तत्कालीन जो कृषि मंत्री रहने कन्हैया लाल मड़िक लाल मुंशी के मुंशी जैन ला कहा जाते ओमन के डहाल ले योजना ला शुरू किया गया से यानी कि महोत्सव ला मनाए के शुरुआत किया गया से ताकि हम लोग प्राण वायु मिले माटी हर और पानी हर संरक्षित रहे माटी ला कैसे वो अपन के जड़ी ले बांध के रखते जल हर नीचे जाते खलिया जाते और भूजल इस तरह बाढ़ते पर्यावरण के संतुलन में जलवायु के नियंत्रण में एक संतुलन में पेड़ पौधा के अहम योगदान है। तो ऐसे में संगवारियों हमला पेड़ लगाना पड़ी तो आवसुनी कार्यक्रम में ये सुघर गीत ला पंचराम मिर्जा और संगवारी के गाय गीत है पेड़ लगावा जी पेड़ लगावा गा।

तो संगवारी हो पेड़ लगाए के संकल्प करो और वन महोत्सव सफल बनाओ कार्यक्रम में जाए के बेरा हुआ थे आप मन के संगवारी रामविलास पटेल ले देव विदा राम राम जय जुहार।

किसान भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत।

0: अरमान मलिक की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत के अंतर्गत।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज में ये गीत।
5: शेख

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए फिल्म सिलसिला का गीत अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। जावेद अख्तर के बोल हैं और शिव हरि का संगीत है।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने वक्त फिल्म का गीत सुना। इस गीत को लिखा था साहिर ने, संगीतबद्ध किया था रवि ने, और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही।

0: इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य

0: स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान

0: छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद

0: लखन।
1: दोस्तों लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को

0: नदी नदी ना
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नदी ना
0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नदी ना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर।

0: भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध संगीत, लेकिन उससे पहले सुनिए आज़ादी का जयघोष, वंदे मातरम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906

0: 7 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे आजादी का जय घोष वंदे मातरम FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविध संगीत। पहले सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल।

कार्यक्रम विविध संगीत में लीजिए आप सुनिए भूपेंद्र और मिताली मुखर्जी की आवाज में ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविध संगीत। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण अब हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रॉब
2: और जतिन।

0: ఇంతవరకు మీరు మధుర గీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి సమయం 11 గంటలు కావస్తుంది. హిందీలో వార్త ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే భవతారిణి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं. नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा.
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है. हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है. अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया. आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान में आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं. ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है.
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है. लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही. इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं.
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है. दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है. भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है. रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन